मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 19वीं तिथि। तदनुसार 9 मई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:56 और 45 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार होंगे।

0: मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान

0: की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद सुर में गाए इस देश गान के साथ।

भारत की आत्मा है पर प्रभु श्री राम। हिंदू धर्म के चार आधार स्तंभों में से एक है दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान श्री राम।

जहाँ भगवान राम है वहीं भगवान हनुमान है, जहाँ गूंजे जय श्री राम का नाम वहाँ बजरंगी करते धाम।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे जगजीत सिंह, हरिओम शरण और लता मंगेशकर के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:26 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार।
1: इस युग में पुरुष का वर्चस्व है, वो एक ऐसी संस्कृति गढ़ रहा है जिसमें शक्ति का बोलबाला है। नारी का स्थान इस संस्कृति में गौण है। यही कारण है कि आज संस्कृति में संतुलन नहीं और वो एक युद्ध से दूसरे युद्ध की ओर जा रही है। वर्तमान संस्कृति की प्रेरक शक्तियाँ विनाश की शक्तियाँ हैं। हर ओर मानव जीवन की आहुति दी जा रही है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ये एकांक की संस्कृति जगह जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। समय आ गया है कि नारी अब संस्कृति में हस्तक्षेप करे। नारी का दायित्व धरती के समान है, जो न सिर्फ वृक्ष के बढ़ने में मदद करती है बल्कि उसके विकास को सही सीमा में भी रखती है। वृक्ष के चारों ओर शाखाएं फूटती हैं, लेकिन उसके सभी गहरे बंधन धरती में होते हैं और वहीं से वो जीवन पाता है। नारी मानव संबंधों का केंद्र है। परिवार ही मुख्यतः उसका संसार है। यहाँ वो व्यक्ति को सही अर्थों में व्यक्ति बनाती है। ये कार्य वो प्रेम और स्नेह के माध्यम से करती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पारिवारिक जीवन ही नारी का जीवन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति और संगठन ये अलग मानवीय संसार ही नारी का संसार हैं। ये मानवीय संसार

0: अनुसार परिवार से बाहर भी जीवन की अनेक गतिविधियों में देखा जा सकता है। शक्ति के गर्भ में पुरुष को सब मानवीय चीज़ों और रिश्तों का मानवीय मजाक उड़ाने की आदत हो गई है। यही कारण है कि आज नारी भी ऊंची आवाज़ में ये कह रही है कि वो नारी नहीं है। वो शक्ति और संगठन के क्षेत्र में खुद को पुरुष के समान सिद्ध करना चाहती है। उसे मानव जाति की जन्मदाती या गृहस्थ को चलाने वाली कहा जाता है तो उसके सम्मान और अभिमान को ठेस लगती है। उसे इस दुखद मानसिक स्थिति में लाने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है। आधुनिक संस्कृति ने अपने धन और शक्ति के कारण नारी का संसार उससे छीन लिया है। घर धीरे धीरे दफ्तर में बदलता जा रहा है। पुरुष मानो सारे संसार पर अधिकार जमाने पर आमादा है। नारी के स्थान उसकी भूमिका के संबंध में वो चिंतित नहीं। नारी का घर बिखर रहा है लेकिन वो स्वयं बिखरी या टूटी नहीं है। पुरुष के अत्याचारों के बावजूद वह जिंदा है।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव नविंद्रनाथ टैगोर के विचार।

अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं भूपिंदर सिंह। सुबह 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर विनय सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है गर्मियों के लिए कृषक क्रियाएं। साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर डॉक्टर वी के राजपाल की वार्ता प्रसारित की जाएगी, जिसका शीर्षक है बच्चों के दिल में छेद की परेशानी।

सुबह 9:45 का समय है कार्यक्रम लोक संगीत का। साथी अभिनेता मैकमोहन पर केंद्रित है हमारा आज का कार्यक्रम, आज के कलाकार जिसे आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत प्रसारित किया जाएगा दिन में 11:30 पर।

दोपहर 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर नश्य की जाएंगी गजलें। गायक कलाकार हैं कमल सिंधु।

सायकालीन सभा में शाम 5:30 पर युवावाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी ग्रीन ऑस्कर पर। जानिए का डंग बीटल यानी गोबर भृंग के विषय में। साथ ही अक्षता शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है सेवा संयम और संवाद के प्रतीक गोपाल कृष्ण गोखले।

शाम 6 बजे ग्रामीण लोक कार्यक्रम में चर्चा का विषय है प्राकृतिक खेती और गौ पालन। साथ ही महाराणा प्रताप जयंती पर आप चर्चा सुन सकते हैं।

शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। सेहत टिप्स, ज्ञान सागर, नई खोज व फिल्म संगीत के साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है ए भाई जरा देख के चलो।

शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र है डॉक्टर सुनीता रानी घोष की वार्ता। शीर्षक है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में नारी संचेतना। रात्रि 9:30 का समय है कार्यक्रम रेडियो पत्रिका का। साथ ही रात्रि 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं भूपिंदर सिंह, संगीतकार सतीश भाटिया।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विनय सिंह की वार्ता। शीर्षक है गर्मियों के लिए कृषक क्रियाएं।
1: मृदा को पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए ढीला करना आवश्यक है, परंतु मृदा को इतना ढीला या पोला भी नहीं बनाना चाहिए कि पौधे बढ़वार करके उसमें पौधों की जड़ें स्थिर भी न रह सकें। पौधों की आवश्यकता अनुसार भूमि में जल का संचय रह सके तथा मृदा के सभी आवश्यक तत्व पौधों को आसानी से प्राप्त हो सकें। खेत में बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य करते हैं उन्हें प्रारंभिक कर्षण कहते हैं तथा खेत में बीज बोने के बाद फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि यांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीय कर्षण कहते हैं। गर्मियों में जुताई के द्वारा जायद की फसल लेने के लिए खेत को तैयार किया जाता है, बाद में पाटा चलाकर मृदा में नमी को सुरक्षित रखते हैं। तैयार किए गए खेत में बीज मिट्टी के संपर्क में आसानी से आ जाते हैं और अंकुरण के लिए नमी प्राप्त कर लेते हैं। छोटे बीजों को बोने के लिए अधिक जुताई व बड़े आकार के बीजों को बोने के लिए कम जुताई की आवश्यकता होती है। मृदा से अधिक वायु संचार को बनाए रखने भी आवश्यक होता है। मृदा में वायु मृदा रंध्रों में पाई जाती है। इन्हीं रंध्रों में मृदा जल भी होता है। अधिक बड़े रंध्रों में वायु अधिक व वायु का संचालन भी अधिक होता है। गर्मियों में जुताई करने से मृदा में वायु एवं जल दोनों ही उचित मात्रा में उपस्थित रह सकते हैं। वायु की उपस्थिति में अनेक लाभदायक जीवाणु जैविक पदार्थों का विघटन करके पौधों के अप्राप्य तत्वों को उपलब्ध तत्वों में बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों जीवाणु क्रियाओं के लिए वायु की उचित मात्रा आवश्यक है। मृदा में 1-2% तक ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। जड़ों के वातावरण में 10-20% तक कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थित होने पर जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। जिन खेतों में गर्मी की जुताई होती है उसमें कणों के समुच्चय बन जाते हैं जिससे रंध्रों का आकार बड़ा हो जाता है। रंध्रों का आकार बड़ा होने के कारण मृदा में जल का नीचे की ओर संचार बढ़ जाता है। जैसे ही वर्षा होती है उसके पानी को भूमि की ऊपरी सतह सोख लेती है और नीचे की ओर चला जाता है। इस प्रकार मृदा कटाव द्वारा जल कम हो जाता है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत को गर्मियों में जोतना अत्यंत लाभप्रद होता है। जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना आवश्यक है जिससे कि खरपतवारों की जड़ें ऊपर की सतह में आकर धूप वायु से नष्ट हो सके। गर्मियों में जुताई करने से अनेक कीट या इनके प्यूपा लार्वा आदि जुताई के समय भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये कीड़े मकोड़े पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं या तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं। जुताई करते समय बहुत से कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं और उनके पोषण के स्थान भी नष्ट हो जाते हैं। फसलों के कुछ हानिकारक रोगाणु व फफूंदी

0: आदि जो मृदा के सड़े गले जैविक पदार्थों या फसलों के अवशेषों पर पनपते रहते हैं, गर्मी की जुताई के कारण नष्ट हो जाते हैं। गेहूं आदि का स्कैब रोग जो जिब्रेला नामक कवक द्वारा फैलता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों कवकों द्वारा मूल निगलन व पौधा अंगमारी जैसे पौधों के आक्रमण से फसलों को बचाया जा सकता है। मक्का व ज्वार के डंठल पर स्कैब रोग के जीवाणु शरण पाकर रबी में गेहूं या जौ की फसल पर आक्रमण करते हैं। यह सभी रोगाणु गर्मियों में कर्षण क्रिया करने से तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। गोबर या कंपोस्ट खाद को खेतों में ढेरों के रूप में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से अनेकों पोषक तत्व धूप या वायु से नष्ट हो जाते हैं। अतः जैविक खादों को भूमि की सतह पर बिखेर कर शीघ्र जुताई द्वारा खेतों में मिला देना चाहिए। गर्मियों में जुताई करके फसलों के अवशेष को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। गर्मियों में की जाने वाली कर्षण क्रियाओं में निराई गुड़ाई भी महत्वपूर्ण है। यह कर्षण क्रिया बीज बोने के बाद खड़ी फसल में की जाती है। खड़ी फसल में निराई गुड़ाई करने से मृदा में वायु का संचार आसानी से होता रहता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन अंदर जाती है और श्वसन क्रिया से तथा कार्बनिक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसे बाहर निकलती हैं। पौधों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। उनको भी वायु से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन लेने की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सतह से मृदा जलवाष्प के रूप में सदैव उड़ती रहती है। गर्मियों में यह क्रिया और तीव्रता से होती है। जल की इस हानि को रोकने के लिए कृषि यंत्रों द्वारा सतह की मिट्टी को खुरचकर ढीली तथा भुरभुरी बना देना चाहिए। मिट्टी ढीली और भुरभुरी होकर सूख जाती है और मल्च का कार्य करती है। निराई गुड़ाई का एक मुख्य उद्देश्य खरपतवारों को नष्ट करना भी है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। जुताई एवं निराई गुड़ाई कर्षण क्रियाओं को लेकर देश में जो अनुसंधान हुए हैं, उन्होंने हमारे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। खरपतवार नाशी रसायनों की उपलब्धि से अब बहुत सी फसलों में जुताई एवं निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवारों को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि इन कर्षण क्रियाओं में खर्च अधिक आता है। अनुसंधानों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि मक्का एवं गेहूं की खेती कम जुताई करके भी की जा सकती है, परंतु बीज की बुवाई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग करना पड़ता है और ऐसे खरपतवार नाशियों का भी प्रयोग करना पड़ता है जिनका कोई बुरा प्रभाव न हो। प्रत्येकाई क्षेत्र में किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जुताई की आधुनिक विचारधारा न्यूनतम कर्षण को अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि उपज में कोई कमी किए बिना मिट्टी को कम से कम तैयार करने की कर्षण क्रियाएं करना।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनय सिंह की वार्ता। शीर्षक था गर्मियों के लिए कृषक क्रियाएं।

राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है, वह है हिंदी। फादर कामिल बुल्के।

हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एकता के धागे में पिरोया जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती।

हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। वीवी गिरी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का।

0: तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलम गुजरात टाइटन्स दलम सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

0: Treasury's actions were aimed at cracking down on Iran's ability to threaten ships operating in the Strait of Hormuz and regional allies. Ashish Abraham for Akashvani News, Delhi.
1: The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the US maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on May 14th and May 15th. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both the countries. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीटिंग भी 196.1 मीटर पर सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर वी के राजपाल की वार्ता। शीर्षक है बच्चों के दिल में छेद की परेशानी।
3: भाइयों और बहनों, आज मैं आपको, आपने देखा होगा कई माँ बाप कि वे इस बात से चिंतित रहते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें बता दिया है कि उनके बच्चे के दिल में छेद है, और इसका अपने आप पता तब लग सकता है यदि आप शुरू से ध्यान दें कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो क्या ठीक से बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ रहा तो हो सकता है उसके किसी हिस्से में और हो सकता है दिल के अंदर छेद वाली प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चा दूध पीते वक्त हाँफ जाता है, कभी कभी उसके सर पे पसीना आ जाता है, और अगर बच्चा बड़ा है तो वो खेलता है, दौड़ता है तो हाँफ जाता है। ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चा नीला भी पड़ जाता है, और इस नीलेपन का कारण दिल के अंदर दूसरे दोषों के अलावा दिल में छिद्र का होना भी हो सकता है। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम जो है बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, और बाल रोग विशेषज्ञ को हमने ट्रेनिंग दी है कि वह दिल की जांच करके ये बता सके कि क्या दिल में कोई खराबी है कि नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि दिल की आवाज़ों में कोई खराबी है तो आगे जांच करके वो इसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बारे में शंका का समाधान ऐसे हो सकता है कि जो दिल है हमारा वो 6 हफ्ते तक जब पेट में बच्चा होता है तभी पूर्ण बन जाता है। अगर उस वक्त माँ में कोई दोष है, माँ में कोई बुखार है, खांसी है या कोई अनुवांशिक चीज़ है तो उसका असर दिल पे पड़ सकता है और दिल के अंदर कोई ना कोई खराबी पैदा हो सकती है। पर अभी तक के अध्ययनों से पता लगा है कि 90% बच्चों में जिनके अंदर ये खराबी होती है उसका पता ठीक से नहीं लग पाता और उसका कारण ज्ञात नहीं हो पाता। अब ये छिद्र होता क्या है? ईश्वर ने जब बच्चे को पेट में रखता है, भ्रूण अवस्था में होता है, उस वक्त उसको जिंदा रहने के लिए मां से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो तरह तरह के द्वार भगवान उसमें खोल देता है, और जो ही बच्चा पैदा होता है इन द्वारों को बंद हो जाना पड़ता है। पर किसी कारणवश अगर ये द्वार बंद नहीं हो पाते तो डॉक्टर और आप जो है बच्चे को तकलीफ होती है और कहा जाता है कि बच्चे के अंदर छेद हो गया। एक्चुअली ये छेद जो है एक नॉर्मल चीज होती है, इसको बंद होना होता है, अगर नहीं बंद हो पाता तो कहते हैं दिल में छेद। इसकी दो मुख्य जो है अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये जो हमारा दिल है उसके नीचे के भाग के अंदर कोई द्वार खुला रह जाता है तो उसे VST कहते हैं, अगर ऊपर के भाग में कोई द्वार खुला रह जाता है तो उसे ASD कहते हैं। और ये कई तरह का हो सकता है। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि जिंदगी भर आपके दिल के अंदर ऐसी अवस्था हो आपको पता ही ना लगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये अवस्था इतनी ज्यादा भयानक होती है कि थोड़े से ही दिनों में बच्चा जो है पनपता नहीं है ठीक से, और वो जो है तरह तरह से हाँफ जाता है।

0: तरह से नीला पीला पड़ता है, तो इसी अवस्था में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। जब आपको पता लग गया कि दिल के अंदर छेद है तो आपको ये भी इच्छा होगी कि मैं जानूं इसका उपचार क्या। 20-30% जो ये डिफेक्ट्स हैं, जो ये छेद हैं, ये अपने आप भी समय के अनुसार बंद हो जाते हैं। इसमें ये देखना पड़ता है कि डॉक्टर इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी जटिलता ना पैदा हो, पर अगर ये अपने आप बंद नहीं होता है, जटिलता होती है, तो अब हमारे पास बहुत ही सेफ तरह के इंटरनेशनल प्रोसीजर्स और बहुत ही सेफ तरह के ऑपरेशंस आ चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं है और 99% इसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वी के राजपाल की वार्ता। शीर्षक था बच्चों के दिल में छेद की परेशानी।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 7:18 हुए हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण।

0: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ।
2: भारतीय आर्काइव्स,
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हरना की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
4: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
3: प्रदेश में 7 मई से डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पहले चरण की स्वगणना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा,
5: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
3: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में कल जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन

0: आज और कल किया जाएगा। दोनों दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कल 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 11 मई को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कानपुर में कल सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से राहत दिलाएगा। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कल मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार होमगार्ड्स के हित में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: देवकाशो होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देशभर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई

से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त, यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला बदलते हुए मौसम के साथ। ताज नगरी में शुक्रवार को मौसम का मिजाज अजीबोगरीब रहा। आधे शहर में जहां 2 से 3 बार तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया, वहीं कुछ शेष भागों में शहर में सूखा पड़ा रहा, यानी कि कुछ हिस्से ठंडे रहे तो बाकी में धूप खिली रही। शुक्रवार सुबह लगभग पूरे शहर पर बादल छाए रहे, तेज बारिश के आसार बन रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 10 बजे के आसपास कुछ क्षेत्रों जैसे कि भगवान टॉकी से लेकर कलेक्ट्रेट तक कई हिस्सों में बूंदाबांदी और तेज बारिश हुई। इस बदलते हुए मौसम ने सेहत पर अपना बुरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश होने के बाद तापमान में करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है, इससे शरीर पर असर पड़ रहा है। तापमान के उतार चढ़ाव से मांसपेशियों में सिकुड़न और फैलाव हो रहा है, इससे शरीर दर्द जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। साथ में बारिश के बाद संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है और पेट से संबंधित संक्रमण भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।

अब गांव गांव तक पहुंचेगा कौशल विकास अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण को संचालित किया है। नई शिक्षा नीति में कक्षा

6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में इसे प्रभावी रूप से कक्षा 9 और 11वीं में लागू किया गया है ताकि एकेडमिक स्तर के भीतर प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके।

कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे विद्यार्थियों के लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE सत्र 2026-27 से अपनी मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन पारंपरिक अंकों के आधार पर नहीं बल्कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। नए सत्र से ये कार्ड नया कार्ड प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करेगा। इससे बोर्ड का ये मानना है कि इस बदलाव से बच्चों पर अंकों का दबाव कम होगा और वे अधिक सहज एवं रचनात्मक वातावरण सीख सकेंगे।

सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर स्कूलों के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं निजी परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई के अनुसार दूसरे चरण की परीक्षा 15 मई से शुरू होगी। ये परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। इस बार परीक्षा में 6 लाख से अधिक छात्रों के शामिल होने की संभावना है। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। विवाह पंजीकरण में अब वर और वधु उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही हो पाएगी। सभी उपनिबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सूचनाओं का सिलसिला श्रोताओं हम आगे भी जारी रखेंगे। सफर में आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

आसपास कार्यक्रम में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जा रहा है। इससे आपसी सुलह समझौते के आधार पर 7.35 लाख मुकदमों का निस्तारण चिन्हित किया गया है। इसके तहत वर्ष 2022 से

वर्ष 2025 के दौरान हुए चालानों के निस्तारण के लिए चार अलग अलग कोर्ट बनाई गई हैं। इसमें जिले की सभी बैंक व फाइनेंस कंपनी, मोबाइल कंपनी एवं विद्युत विभाग के साथ ही चिकित्सा हेल्प डेस्क लगाई जाएंगी। वर्ष 2022 के चालानों के निस्तारण के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, वर्ष 2023 के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, वर्ष 2024 के चालान निस्तारण के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 12 एवं वर्ष 2025 के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 09 में चालानों का निस्तारण किया जाएगा।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ष 2024 के चालान निस्तारण के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 12 एवं वर्ष 2025 के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 09 में चालानों का निस्तारण किया जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर। रेलवे पीआरओ के अनुसार सुबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सुबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पीआरओ ने बताया कि गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मल्हौर, ऐशबाग और मानक नगर होकर संचालित की जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। पीआरओ ने बताया कि कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक और मदुरई से 3 अप्रैल से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित की जाएंगी।

कोटा रेलवे स्टेशन पर जारी पुनर्विकास कार्य के चलते गाड़ी संख्या 13238 एवं 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस कोटा के स्थान पर सांगरिया स्टेशन से चलेगी। आगरा रेल मंडल के पीआरओ के अनुसार ट्रेन 16 अप्रैल से 12 मई तक कोटा स्टेशन के स्थान पर सोगरिया स्टेशन से रात्रि 20:40 पर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 13237 एवं 13239 पटना कोटा एक्सप्रेस 15 अप्रैल से 11 मई तक कोटा स्टेशन के स्थान पर सोगरिया स्टेशन पर समाप्त होगी।

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्रों का विस्तार करते हुए पहली बार कानपुर व मेरठ को नए परीक्षा शहरों के रूप में शामिल किया है। अब तक प्रदेश के 9 शहरों में परीक्षा का आयोजन होता था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 11 कर दी गई है। 24 मई को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 तक होगी, वहीं दूसरी पाली 2:30 से शाम 4:30 तक आयोजित की जाएगी।

जनगणना 2027 में जो भी डाटा एकत्रित किया जाएगा अब वह लीक नहीं होगा। ये सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं आएगा। व्यक्तिगत डाटा किसी भी कीमत पर लीक नहीं किया जाएगा, न ही इसके बारे में किसी कर्मचारी और अधिकारी को बताने की अनुमति होगी। 22 मई से जनगणना शुरू होगी। 23 जून में 11,000 प्रगणकों को लगाया गया है। सभी प्रगणकों के मोबाइल पर विशेष ऐप इंस्टॉल कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और एक बार पुनः शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। शहर को सबसे स्वच्छ बनाने के लिए चाहिए जनता का फीडबैक। जी हां, यही मंशा रखते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में ताज नगरी को देश का नंबर वन स्वच्छ शहर बनाने को नगर निगम प्रशासन ने सिटीजन फीडबैक अभियान को और प्रभावी और तेज करने की मुहिम शुरू कर दी है। वहीं शहर को अर्थात आगरा को स्मार्ट सिटी 2 प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। पीपीपी मोड पर बनेगा कचरे से गैस का प्लांट। ताजनगरी को अत्याधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें कई मुद्दों पर बातें हुई, जिसमें शामिल हैं स्मार्ट सिटी योजना, डिजिटल आगरा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सख्ती से वाहनों का चालान व उनसे संबंधित जो नियम है लोगों द्वारा उनका पालन करवाना। वहीं आपको बता दें आज एडिट माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2022 की 2 दिवसीय प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो चुकी है।

और आइए अब नजर डालते हैं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने डेंटल सर्जन, फील्ड मॉनिटर, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, लेडी हेल्थ विजिटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर समेत 141 पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। अभ्यर्थी 12 मई सन 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंटआउट लेकर जाना अनिवार्य है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लर्क कैडर में 30 मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में की जाएंगी। इन पदों पर क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस और फुटबॉल खेल श्रेणी के खिलाड़ी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई सन 2026 है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने डिप्टी मैनेजर के 10 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। इच्छुक एवं योग्य

0: उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई है। वहीं झारखंड में 90 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होंगी। आरक्षण का लाभ झारखंड के मूल निवासियों को दिया जाएगा और इसी के साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचनाओं का सिलसिला आसपास यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है हमारा अगला अन्य प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचार प्रभात का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें

0: एआईएडीएम के महासचिव एडापड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है

0: कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: headlines once again. Suvendu Adhikari to take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to attend the swearing-in ceremony. Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Rajasubramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarter-finals for the first time. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरतहाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: रियासत नई सरकार की हलफ बर्दारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफबरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर आर.एन. रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लियामानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाती बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरजी खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक्किद कराने को यकीनी बनाने के लिए हजारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में

0: टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमीजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि एएमएमके पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
1: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास दो अरकान असम्बली आ गए हैं जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं जिनकी चार दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमत हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन चार दहाइयों की शानदार खिदमत हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफी तजुर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 1,25,000 अशिया मुकद्दस आग की नजर की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाजात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भाई के भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी जब मंदिर में अजीम शान तरीके से कुंभा भिषिक का इनेकाद किया जाएगा जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुज पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज से गैर कानूनी इकदामात को कानूनी जवाब हासिल होगा बजाय इसके कि इससे तनाजे को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवजा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
2: इस करारदाद को अमेरिका के साथ साथ बहरैन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाजरानी के लिए खतरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फौज ने कहा है कि अमरीकी फौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नजदीक

0: ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फजाई हमलों में बंदर खमीर सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फजाई निजाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महाजाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज में सवार भारतीय हमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाकया करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है, जबकि अमरीका ने कहा है कि उसने उसी रोज दो जहाजों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाकयात के बावजूद सिफारती इजराइल ने काम करना बंद नहीं किया है। 14 निकाती अमरीका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है, जिनमें चीन और हांगकांग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हथियार और शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामे निगार से।
2: अमरीका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वह ईरान के फौजी सनअती ठिकाने के खिलाफ इकतसादी कार्रवाई करने को तैयार है, ताकि ईरान को हथियार बनाने की सलाहियत को असर नौ परवान चढ़ाने से रोका जा सके। महकमे ने कहा है कि वह एयरलाइंस समेत ऐसी किसी भी गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार है जो ईरान की नाजायज तजारत की हिमायत करती हो। वो उन गैर मुल्की माली इदारों पर दूसरे दौर की बंदिशें आयद कर सकता है जो ईरान की कोशिशों में मदद दे रहे हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो चीन की छोटी आजाद रिफाइनरी से वाबस्ता हैं। माहिरीन का कहना है कि महकमे खजाना की इस कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुज और इलाकाई इत्तेहादियों में जहाजों की आमदोरफ्त में धमकी देने की ईरान की सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई करना है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह आर्जी माहदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि यह जंगबंदी 9 मई से 11 मई तक रहेगी और इसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में दोनों तरफ से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना भी शामिल है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन में केरलम, माहे, तकसीब, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटा से की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुजाऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लेबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रतिका बर्मन ने 7वीं और 85वें मिनट में और देवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
0: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को लीडर मुंतखब किए जाने के बाद रियासत के उजाला के तौर पर उनके नाम के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हलफबरदारी की तकरीब आज दिन में 11 बजे होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा लीडर इसमें शिरकत करेंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग में बर्तरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का उंसुर पैदा करें। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड और शुमारती आदाद शुमार जारी किए। ڈی آر ڈی او نے مقامی گلائیڈ ہتھیاروں کے نظام تارا کا کامیاب تجربہ کیا. ان خبروں کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. بھارت اور سنگاپور انسداد دہشت گردی اور سرحد پار جرائم پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے پانچویں اجلاس میں دہشت گردی اور سرحد پار جرائم کے لیے تعاون بڑھانے پر متفق. برکس کی صدارت کے دوران بھارت ایم ایس ایم ایز تعاون کو

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था मंजुली। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है मनोरंजन, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्दश्री मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

गुप्त फिल्म का गाना अभी आपने सुना, साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत विजू शाह का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार शानू व साथियों की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, धुन बनाई है श्याम सुंदर ने, और फिल्म का नाम है माशूक।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में, और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को है। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है जिले की हलचल का।

0: अमती और अमेठी जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अमेठी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का।
2: शामली जिले में जिलाधिकारी आलोक यादव ने गेहूं खरीद की कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गेहूं का भुगतान नियमानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। डीएम ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता मिली तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जनपद में 30 मार्च 2026 में कुल 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद जारी है। इसमें खाद्य विभाग के 4, पीसीएफ के 16, पीसीयू के 6 और भारतीय खाद्य निगम के 3 केंद्र संचालित है। अब तक जिले में 1934 किसानों से 7,504 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में बताया कि अब तक 1455 किसानों को 1526 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से खुल जाने चाहिए। केंद्र प्रभारियों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन करनी होगी। शामली जिले के ग्रामीण अंचल के गली मोहल्लों और बाजारों को बिजली कटौती के दौरान भी दूधिया रोशनी से जगमग रखा जाएगा। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर योजना के तहत जिले को कुल 275 सोलर लाइटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन ने इस पूरी परियोजना के लिए 59,11,675 रुपए का बजट निर्धारित किया है। परियोजना अधिकारी यूपी नेड़ा आर बी वर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए तय की नई कार्य योजना के तहत जिले की 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा जहां 150 सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। योजना के तहत लगाए जाने वाली प्रत्येक लाइट की कीमत 21,497 रुपए तय की गई है। ये लाइटें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। 12 वोल्ट और 18 वाट की इन लाइट्स में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा जिससे अगले 5 वर्षों तक इनकी कार्य क्षमता की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। इसमें लाइट खराब होने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायिक केंद्रों और बाजारों के लिए 125 सोलर लाइट का एक अलग लक्ष्य मिला है। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां दुकानों की संख्या अधिक है और जहां बस स्टैंड और सार्वजनिक चौक स्थित है। शामली जिले में ऊर्जा निगम ने बिजली घरों पर लंबे समय से जमे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिशासी अभियंता ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों के लिए नए आदेश किए हैं। इसके तहत अब कोई भी कर्मी अपनी गृह क्षेत्र या एक ही स्टेशन पर वर्षों तक तैनात नहीं रहेगा। अधिशासी अधिकारी सौरभ पाठक ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को उसके निवास स्थान वाले क्षेत्र के एसटीकेवी फीडर या सब स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। शामली में कृषि विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले 358 कीटनाशी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश अनुसार सभी विक्रेताओं को एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली IPMS पोर्टल पर पंजीकरण और मासिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन निश्चित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिले के 900 में से 358 विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप यादव ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 28 दिनों के भीतर पंजीकरण और डेटा फीडिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया तो इन लाइसेंसों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। वेस्ट यूपी का शामली जिला, जिसे दुनिया अब तक केवल शुगर बाउल के नाम से जानती थी, वहां अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जिले के प्रगतिशील किसानों ने केवल गन्ने पर निर्भरता छोड़ खेती के विविधीकरण को अपना लिया है। अब शामली के खेतों में गन्ने की मिठास के साथ सरसों की पीली चादर और दलहन की महक एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी लिख रही है। सरकारी आंकड़े इस बदलाव की तस्दीक करते हैं। साल 2023 तक जिले में तिलहन का रकबा महज 650 हेक्टेयर था, जो वर्तमान साल 2026 में 10 गुना बढ़कर 7,000 हेक्टेयर पार पहुंच गया है। अकेले रबी सत्र में सरसों की विकार बुआई हुई है। मृदा सुधार के लिए किसान अब उर्द और मूंग जैसी दलहनी फसलों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य श्रेय जिला कृषि विभाग के संवाद और इंटरनेट के माध्यम से बढ़ी जागरूकता को जाता है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव की टीम ने चौपालों और सोशल मीडिया के जरिए किसानों को नई किस्मों और फसल चक्र की जानकारी दी। किसान अब इंटरक्रॉपिंग यानी सह फसली खेती के जरिए एक ही खेत से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। गन्ने के बीज, सरसों और आलू उगाकर लागत कम की जा रही है।

0: है वही पॉपुलर के पेड़ और आम के बाग किसानों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया बन गए हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
1: जनपद शामली में दलहन तिलहन निर्भरता अभियान के अंतर्गत दलहन तथा तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद में गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की सह फसली खेती तथा दलहन तिलहन की खेती के अंतर्गत जनपद में दलहन तिलहन के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इसमें कृषि विभाग के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान तथा उनके द्वारा वितरित निःशुल्क मिनी किट तथा उच्च गुणवत्ता के बीच की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
2: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमेठी जिले की हलचल। आलेख है रजनीश सिंह का।
3: जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण, व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जो दिनांक 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित होगी। इसके पश्चात 22 मई से 20 जून तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का विस्तृत कार्य संपन्न किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अर्पित गुप्ता ने स्वगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए पोर्टल बहुभाषीय, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन, ओटीपी सत्यापन, पता दर्ज करना, मानचित्र पर लोकेशन चिन्हित करना तथा प्रश्नावली भरकर SC ID प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वगणना से फील्ड कर्मचारियों का कार्यभार कम होगा तथा डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, क्योंकि जानकारी सीधे नागरिकों द्वारा भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया 24/7 उपलब्ध रहेगी, जिससे व्यस्त एवं प्रवासी परिवारों को भी सुविधा मिलेगी। जनगणना की तैयारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मास्टर ट्रेनर, सुपरवाइजर, प्रगणक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही जन जागरूकता हेतु मीडिया, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न विभागों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए दिवसवार कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग दिनों में प्रशासन, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला समूह और अन्य वर्गों को जोड़कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन एवं शहरी वार्ड कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को गंभीरता से लेते हुए समन्वय के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्षेत्र या परिवार छूटने न पाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरी गंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा किया गया। यह कार्यशाला महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, रिटायर्ड महिला शिक्षकों एवं महिला समूहों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जनपद में बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग साथ मनाई गई। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाराणसी स्थित कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान शैक्षिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उपस्थित रहे। प्रसारण उपरांत जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में

0: नामांकित छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व स्टेशनरी वितरित की गई, जिससे उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़े। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नामांकन अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले 11 शिक्षकों को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

रंगोली फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था मैं नशे में हूँ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एस टी बर्मन और फिल्म का नाम है मंजिल।

मदारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार थे फारूक और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। शब्दश राजेंद्र कृष्ण की, धुन बनाई है रवि ने, फिल्म का नाम है शहनाई।

प्रत्येक कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम।

शुक्लेश के सुर में भी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। आइए कार्यक्रम सुर सरिता की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ।

आप तो ऐसी न थी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की स्वर में। बोल निदा फासली की थी, संगीत उषा खन्ना का दिया हुआ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है बॉबी।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन और फिल्म का नाम है शान।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था मस्ताना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मुकेश और हेमलता की आवाजों में। गीतकार हैं गुलशन बाबरा, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी और फिल्म का नाम है विश्वास।

विश्वास फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश और हेमलता की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बाबरा ने, संगीत कल्याणजी आनंद जी का दिया हुआ। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सत्यभान शर्मा का राग अलहिया बिलावल में ख्याल गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्यभान शर्मा का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग अलहिया बिलावल। इसी के साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी आभा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता मोहन माकिजानी के बारे में, जो फिल्म जगत और प्रशंसकों के बीच मैक मोहन के नाम से जाने जाते हैं।

वे मुख्य रूप से खलनायक के किरदार में निभाने के लिए जाने जाते थे। श्रोताओं, मैकमोहन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन के मामा थे। उन्होंने फिल्म डॉन, फिल्म कर्ज, सत्य पे सत्ता, जंजीर, रफू चक्कर, शान, खून पसीना और शोले सहित लगभग 200 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वैसे तो वे बचपन में अभिनेता नहीं बल्कि क्रिकेटर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए कई बार मैच भी खेले थे। लेकिन जब वे मुंबई आए तो उन्होंने थिएटर देखा और तभी से एक्टिंग में उनकी रुचि पैदा हो गई। श्रोताओं, फिल्म शोले में निभाए गए सांभा के किरदार ने मैकमोहन को घर घर में पहचान दिला दी। तो श्रोताओं, फिल्म अभिनेता मैकमोहन के बारे में आज हम और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं फिल्म शोले से लिया गया ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के कलाकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से और हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता मैकमोहन के बारे में। श्रोताओं, मैकमोहन का जन्म 24 अप्रैल सन 1938 को कराची में हुआ था। उनके पिता भारत में ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। वर्ष 1940 में मैकमोहन के पिता का ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया। उनकी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ से हुई थी। मैकमोहन ने फिल्मों में करियर बनाने से पहले पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग भी सीखी। मित्रों, अपने 46 साल के करियर में उन्होंने हिंदी के अलावा भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, रशियन और स्पेनिश फिल्मों में भी काम किया। कई फिल्मों में इनका नाम मैक ही इस्तेमाल किया गया था। मैकमोहन ने निर्देशक चेतन आनंद के साथ सहायक के रूप में अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की। उन्होंने साल 1964 में आई फिल्म हकीकत में एक अभिनेता के रूप में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। श्रोता, उससे पहले कि हम मैकमोहन के बारे में और जानकारी आपको दें, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

श्रुतम युतो मैकमोहन फिल्म डॉन, कर्ज, सत्ते पे सत्ता, शान, खून पसीना जैसी कई फिल्मों में भी शानदार काम करते हुए नजर आए, लेकिन जो शोहरत उन्हें फिल्म शोले में मिली उसी ने उन्हें अमर कर दिया। मित्रों, इस फिल्म में सांभा यानी मैकमोहन ने सिर्फ एक ही संवाद बोला है और वह है पूरे 50,000। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस छोटे से डायलॉग की शूटिंग करने के लिए मैकमोहन को मुंबई से बंगलुरु 27 बार जाना पड़ा था। श्रुतम मैक ने ज्यादातर फिल्मों में मुख्यतः खलनायक की भूमिका निभाई। कहते हैं कि जब भी मैकमोहन को सिने स्क्रीन पर पीटा जाता तो उनकी बड़ी बेटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो मैक को काम करने से मना भी करती थी, तो मैकमोहन उनसे यही कहते थे कि ये तो हमारा काम है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के कलाकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से और हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता मैक मोहन के बारे में। श्रोताओं, मैक मोहन की आखिरी उपस्थिति अतिथि तुम कब जाओगे में एक अतिथि की भूमिका में हुई थी। नवंबर 2009 में अश्विनी धीर की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे की शूटिंग के शुरू होने से एक दिन पहले ही मैक मोहन को मुंबई के अंधेरी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि उनके दाहिने फेफड़े में ट्यूमर था और ये बाद में फेफड़ों के कैंसर में बदल गया और अंततः 10 मई सन 2010 को 72 वर्ष की आयु में फिल्म जगत का ये सितारा सदा के लिए अस्त हो गया।

तस्वीर हटाई होगी है।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में राजपुताने का गौरवपूर्ण स्थान है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, कुमान प्रथम महाराणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है।

मित्रों, मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। यह श्रोताओं, एक ऐसे राजपूत सम्राट जिन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी भी विदेशी मुगलों की दासता स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज संपूर्ण देश उन महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे राजपूत और भारत माता के लाल वीर महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है। श्रोताओं, इस अवसर पर हम भी वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन करते हैं और सुनते हैं ये देशभक्ति परक गीत, जिसमें आप देखेंगे वीर भूमि भारत की गौरवमयी झांकी।

श्रोताओ, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई और पिता का नाम उदय सिंह था। इनके जन्म स्थान के बारे में दो धारणाएं हैं। एक धारणा के अनुसार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंताबाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ था। दूसरी धारणा के अनुसार उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा प्रताप को भी कीका नाम से ही पुकारते थे। श्रोता

0: भारतीय इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की चर्चा है, उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक को भी मिली है। कहा जाता है कि चेतक कई फीट ऊंचे हाथी के मस्तक पर उछल सकता था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल गया था। फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया था। जब मुगल सेना वीर महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर 26 फीट लंबे नाले को लांघ गया था, जिसे मुगल फौज का कोई घुड़सवार पार ना कर सका। और बस यहीं पर प्रताप के साथ युद्ध में घायल होने के कारण चेतक को वीरगति प्राप्त हो गई।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

तुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

श्रोताओं, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक महान राजपूत योद्धा और शासक थे। वे अपनी वीरता, अदम्य साहस और मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और जीवन भर स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने अद्वितीय अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया था। मित्रों, आपको पता है महाराणा प्रताप का कद लगभग 7 फीट 5 इंच था। जब वे युद्ध में जाते थे तो वे ऐसा कहते हैं कि वे अपने साथ 80 किलो का भाला और 72 किलो की का कवच, दोनों हाथों में तलवारें और कुल मिलाकर 200 किलो से भी अधिक का वजन लेकर युद्ध किया करते थे। 1557 में हुए एक युद्ध में महाराणा प्रताप ने लगभग 20,000 सैनिकों के साथ 70,000 मुगल सैनिकों का सामना किया था। ये इतिहास में सबसे चर्चित युद्ध है। कहते हैं इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोकुंडा, कुंभलगढ़ मुगलों के कब्जे में आ गए थे। अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगलों के शासन को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई वर्षों तक संघर्ष करते रहे। अकबर ने उन्हें हराने के लिए हर संभव रणनीति अपनाई, लेकिन महाराणा अंत तक अजेय रहे। ऐसे महान, सच्चे राजपूत, निर्भीक योद्धा, देशभक्त और मातृभूमि के रक्षक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हम शत शत नमन करते हैं।

श्रोताओ, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और श्रोताओ, कार्यक्रम में आइए अब बात कर लेते हैं हमारे खास मेहमानों के बारे में, जो बड़ा ही लंबा सफर तय करके आते हैं और कुछ दिन ठहर के फिर चले जाते हैं। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं दूर देश से आने वाले पंछियों के बारे में। श्रोताओ, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, जो कि एक ऐसा वैश्विक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिन हर साल दो बार, मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी पक्षियों के प्रवास का समय अलग अलग होता है। ये पक्षी भारत के अलग अलग अभयारण्यों में प्रवास करते हैं, जैसे रंगीन थेतु, मैसूर अभयारण्य, चेन्नई के दक्षिण में स्थित वेदांत थंगल नामक पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के पॉइंट कैलीमेरे पक्षी अभयारण्य आदि। इनके अलावा देशभर में कई ऐसे गांव भी हैं जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। राजस्थान में किचन गांव के ग्रामीण अपनी संस्कृति के रूप में सारसों को भोजन कराते हैं। तमिलनाडु के दक्षिण में तिरुनेलवेली के पास कुडनकुलम प्रवासी पक्षी अनादिकाल से इस स्थान पर आते रहे हैं। ये प्रवासी पक्षी एक गलियारे में लंबी दूरी तक उड़ान भरते हैं, जिसे अब हम फ्लाईवे कहते हैं। उदाहरण के लिए बार टेल्ड कॉडविट पक्षी लगभग 10,200 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। एक प्रवासी पक्षी बार हेडेड गूज, जिसे भारत का परम हंस कहा जाता है, ये मध्य एशिया विशेषकर मंगोलिया, कजाकिस्तान, तिब्बत आदि में गर्मियों के दौरान प्रजनन करता है और सर्दियों में ये पक्षी हिमालय के ऊपर से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विशेषकर भारत में आराम पाता है। मित्रों, ये दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करता है और इसके लिए विश्व भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ ही समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम लोकमंजरी का। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे लावणी। गायक कलाकार हैं ओम प्रकाश अमर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, लोक मंजरी कार्यक्रम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश अमर की गाई कुछ लावणी।

अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश अमर की गाए कुछ लावनी। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोकमंजरी अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वरों में, जिसे हमने लिया है फिल्म परिणीता से।

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: तेरी सादगी अनमोल है।
1: सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में भी आप सुन रहे थे फिल्म शब्द का ये गीत। गीतकार थे विशाल दबलानी, संगीतकार थे विशाल शेखर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह की आवाजों में कुमार की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है अंकित तिवारी ने। फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट।

श्रोताओ, कार्यक्रम नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म दम लगा के हईशा का ये गीत।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

मीट बोज, पलक मुच्छल, अल्तमश फरीदी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल का ये गीत। कार्यक्रम नई तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जावेद अली, इरफान अली, शादाब की आवाज़ों में सईद कादरी की शब्द रचना को। धुन बनाई है प्रीतम ने, फिल्म का नाम है तुम मिले।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Mr. Subhendu Adhikari was sworn in as the first BJP Chief Minister of West Bengal today at a ceremony at Brigade Parade Ground in Kolkata. 5 cabinet ministers also took oath along with the Chief Minister. The Governor, R. N. Ravi, administered the oath of office in secrecy to the ministers. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Kshudi Ram Tudu.
2: Ami Subhendu Adhikari, Ishwarer name shapot koritechi je bidhi dara sthapito Bharater Sangbidhaner proti ami okritrim nishtha o anugotto poshon koribo. Ami Bharater sarbhoumotto o akhandota rakkha koribo.
1: Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh were also present with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states on the occasion. Earlier, Prime Minister held a roadshow before reaching the brigade ground. Rabindra Jayanti is being celebrated today on Pochishe Baishak, marking the 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore. Cultural functions are held globally with major celebrations at Shanti Niketan, Vishwa Bharati University and throughout West Bengal and Bangladesh featuring Rabindra Sangeet, poetry, dance and drama. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have offered tributes to Gurudev Rabindranath Tagore on the occasion. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form

0: करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इसे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
1: डुमरियागंज से मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर, काबीनी वजीर कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने भी कल खुद गिनती का अमल मुकम्मल किया। उत्तर प्रदेश के इलाकाई डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशंस ने कल यूनिसेफ के तावन से लखनऊ में यूनिसेफ के दफ्तर में सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन पर बेदारी और सलाहियत साजी के सेशन का इनेकाद किया। तकरीब में रियासत के चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने वजाहत की कि खुद शुमारी मर्दमशुमारी 2027 की एक बड़ी इख्तरा है। ये मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मर्दमशुमारी होगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज आज और कल 18 मजामीन में लेक्चरर ग्रेड के 624 ओहदों के लिए तहरीरी इम्तहान करा रहा है। दो शिफ्टों में होने वाले इस इम्तहान में तकरीबन 4,64,605 उम्मीदवार शामिल होंगे। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि तमाम इम्तहान मराकज के कमरों और अहम मकामात को AI पर मबनी CCTV कैमरों से लैस किया गया है और उन्हें जिला कंट्रोल रूम और कमीशन के मरबूत कंट्रोल कमांड रूम से मुंसलिक किया गया है। इम्तहान के तकद्दस से समझौता करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद जिला अदालतों, कलेक्ट्रेट अहातों और सभी तहसीलों में किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लखनऊ की हिदायत के मुताबिक लोक अदालत में खानदानी और उज़्दवाजी तनाज़ात, मोटर एक्सीडेंट, मुआवजे के मामलात, सार्फीन के मामलात और बैंक की वसूली समेत मुख्तलिफ किस्म के मामलात का तस्फिया किया जाएगा। रियासत के स्मार्ट प्री पेड मीटर सिस्टम को खत्म करने और तमाम स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में चलाने का बाजाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है। रियासत के तवानाई के वजीर AK शर्मा ने बताया कि RDSS स्कीम के तहत नसब तमाम मीटरों को फौरी असर से पोस्ट पेड मोड में तब्दील किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: महकमा मौसमियात ने आज मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कई जगहों पर तेज हवा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम मरकज लखनऊ के साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फाल हो जाएगा और 12 मई से वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम है तैयार। सब श्रोता पंचन का ममता के नमस्कार। जल संकट के निकारी विकल्प, जल संरक्षण के लेके संकल्प। हाँ श्रोता पंचो, पानी जौन हमरे सबके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखो हमार देही माँ आधा से ज्यादा मने 70% पनिए से बना है। और ये जो हमार पृथ्वी है ना, वह जले पटी की है, मने चारों ओर यह जले जल। पंचो मने एक बरिया खाना के बगैर रह सकत है, मूल पानी के बगैर ना ही। और हम ही मनुष्य न खाली नहीं, बलुक हरहा गोरू चिरैया चिंगूर और कई जीव जंतु सब जल पर निर्भर है। और देखो दिन ब दिन जल संकट बढ़ते जाते हैं, मने ये एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। और कई स्थानन पर ये जल

0: संकट के भयानक परिणाम भी हम सबका देखे का मिलत है और सुने का भी मिलत है। मने दूर दूर से बहनी होरी लाइन लगाए के पानी भर भर लौती हैं, तब घर के सगरी टहल निपटावत हैं। खाए पिए के साथे पानी से कई काम होत हैं, मने बर्तन चौका कपड़ा लत्ता साफ सफाई सब सम्मा जो है सगरी जो है काम पनिए के है। मुला यह माँ भी लापरवाही से बहुत पानी भे बेजा हो जात है, तो यह के संरक्षण के बुद्धिमता से यह के उपयोग के निवारक उपाय हम सबका जानब बहुत जरूरी है। तो इके उपाय के विषय माँ आगे भाई बात करब, मूल पहले हम श्रोता पंचन के फरमाइशी फिल्मी गीतन और ईमेल और पाथी के ओरिया बढ़ चली। कहे
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम पनघट।

राम राम बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम पंखट में, जहां मैं हूं आपकी रेडियो हमसे पर उपासना पांडे, लेकर आई हूं आपके लिए लोकगीतों की बहार, बहुत सारी एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। बहनों, आज का दिन बड़ा विशेष भी है, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन है या कहीं की जयंती है, जिन्होंने भारत को भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके बारे में सब नहीं जानते हैं। हालांकि बहुत सारी आबादी भलीभांति परिचित है उनके जीवन से, उनके नाम से, उनके काम से, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सब नहीं जानते हैं, और ये सत्य है। और इसलिए समय समय पर हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के साथ उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी साझा करते रहते हैं, जो भारत की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करके स्वयं की भी आहुति दे दी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ का वो महान योद्धा जिसने लोगों में भी साहस और स्वाभिमान जगाने का काम किया, जिनका जन्म हुआ आज ही के दिन यानी 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़। पिता उदय सिंह और माता जयवंताबाई के तरफ उन्होंने अपने जीवन के अंत तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। बचपन से प्रताप बहादुर, स्वाभिमानी और पराक्रमी थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में निपुण थे। जब अकबर पूरे भारतवर्ष पर अपना शासन स्थापित करने का कार्य कर रहा था और उसके दबाव में कई राजपूती शासकों ने समझौता भी कर लिया, उस समय महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने अकबर का डटकर सामना करते हुए उसकी दास्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप ने कहा भी था कि राजपूत सिर कटा सकता है लेकिन सिर झुका नहीं सकता। बहनों, 1876 में हुआ वो हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, उस समय अकबर के सामने महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी लेकिन उनका साहस बहुत बड़ा था। अपने साहस, सेना बल और उनके प्रिय घोड़े चेतक के साथ उन्होंने अकबर का डटकर सामना किया। यहाँ चेतक का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसने युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनकी रक्षा का काम किया। बहनों, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। जंगलों में रहकर के घास की रोटियां तक खाई, तमाम कठिनाइयों को झेला, पर अपने सिद्धांत और देश रक्षा से कोई समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमें ये सीख देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना

हमें अपने आत्मसम्मान और देश के प्रति अपनी वफादारी से, जिम्मेदारी से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बहनों, महाराणा प्रताप के अलावा एक और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज एक नहीं बल्कि तीन तीन महानुभावों की जन्मतिथि है। आज उनका भी जन्मदिन है। उनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 में महाराष्ट्र में, और वो बाल्यावस्था से ही बेहद बुद्धिमान और मेहनती था, और नाम था उनका गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा समाज के लिए शक्ति का कार्य करती है। उनका विश्वास था कि देश की उन्नति शिक्षा और जागरूकता से ही संभव है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे, नरम दल से भी थे, हमेशा शांति, संवाद और लोकतांत्रिक तरीकों से देश की समस्याओं का समाधान चाहते थे। उन्होंने गरीबों के, आम जनमानस के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, देश सेवा के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना और समाज में जागरूकता फैलाना था। देश के प्रति भक्तिभाव और उनकी सादगी के कायल तो स्वयं महात्मा गांधी भी थे, और यही वजह थी कि वो गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। उनका जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है कि देशभक्ति सिर्फ बोल के नहीं बल्कि सेवा और ईमानदारी के साथ साबित होती है। इनके साथ साथ बहनों, आज एक और ऐसी विभूति है जिनका जन्मदिन है, जिन्हें हम सभी रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आपने सही समझा, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे लिए आनंद मठ में राष्ट्रगान की रचना की और देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिख करके हम भारतीयों को एक शस्त्र देने का काम किया राष्ट्रगान के रूप में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल की वो शख्सियत जिन्होंने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की, देश के लिए बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे राजपूती शासकों के लिए बहुत कुछ लिखा, और हमेशा ही देश के लिए समर्पित रहने की बातें भी की और समर्पित की। तो बहनों, आइए कार्यक्रम के माध्यम से हम इन तीनों महानुभावों को याद करते हैं और सुनते हैं ये लोकगीत और नमन करते हैं अपनी इस मातृभूमि भारत को।

0: एक बार फिर आइए बहनों, नमन करते हैं भारत को और बढ़ते हैं कार्यक्रम में। वक्त है हमारी आज की विशेष वार्ता का। हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है विवाह, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ विपरीत सी होती जा रही हैं। विवाह को कमतर हमारी जो नई पीढ़ी है वो आंक रही है, हालांकि सब नहीं, क्योंकि जागरूकता भी बढ़ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं हमारी ये आज की खास वार्ता। विषय है विवाह और सामाजिक परिवेश। वार्ताकार हैं सारिका सक्सेना।
1: से आप ये अर्थ तो अवश्य लगा रही होंगी कि विवाह आज के समय में सिर्फ एक सामाजिक परिवेश बनकर रह चुका है, और इतना ही नहीं, आज ये बदलते समाज में इस हद तक पहुंच गया है जिसका शायद हमें अनुभव भी नहीं होगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समाज का निर्माण परिवार से होता है और परिवार का विवाह से। हर नया विवाह एक नए परिवार की रचना करता है। यदि सभ्य सुसंस्कृत समाज का निर्माण करना हो तो उसके लिए परिवार के निर्माण पर ध्यान देना होगा। एक समय था जब विवाह एक बहुत ही पवित्र आत्मसमर्पण, सेवा भाव और आत्ममर्यादा बढ़ाने के लिए आयोजित सर्वमेघ यज्ञ का धर्म अनुष्ठान माना जाता था। विवाह का अर्थ सिर्फ विवाह नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता था। परंतु आज यह विवाह है तो मिलन, परंतु दो आत्माओं का नहीं बल्कि दो पक्षों की धन संपत्ति का, उनके आर्थिक मूल्यों का, उनके अलौकिक विचारों और उनके क्रूर और हिंसक स्वभाव का। जी हाँ, आज के विवाह का यही सत्य है। आज जिस ढंग से, जिस आडंबर से, जिस अहंकार से और तामसी वातावरण में विवाह होता है, उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह दो आत्माओं का मिलन है या एक सामूहिक समझौता। बहनों, एक समय था कि विवाह योग्य लड़के लड़कियों के माता पिता ही विवाह का निर्णय लेते थे, परंतु आज देखने में आ रहा है कि विवाह के पूर्व लड़कियों को देखने के नाम पर उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। उनके रूप, रंग, चाल ढाल और लेन देन से संबंध तय करने के मापदंड रह गए हैं। लड़कियों की शिक्षा, दीक्षा, व्यवहार, चाल चलन और गुणों का कोई महत्व नहीं होता। इसके विपरीत मैं आपको बताऊं, लड़कों के गुण दोष पर कोई गंभीर चिंतन नहीं होता। लड़का कैसा भी हो, लड़की के अभिभावक हालात से समझौता कर लड़कियों को उसको सौंप देते हैं और अपने बचपन से पाली पोसी हुई बेटी को ससुराल रूपी भाड़ में भुनने के लिए भेज देते हैं, ये जाने बगैर कि उनकी बेटी उस ससुराल में खुशी से रहेगी या खुदकुशी करेगी। विवाह के बाद लड़कियां क्या नहीं देती, परिजनों की सेवा, स्नेह सौजन्य, त्याग साधना से पारिवारिक समस्याओं के निवारण हेतु अपनी स्वयं की इच्छाओं का दमन करती हैं, अपने माँ बाप का घर छोड़ती हैं, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, अपने भाई बहन सबको छोड़कर एकदम नए घर में अजनबियों के बीच आ जाती हैं। लेकिन वहां आकर उन्हें क्या मिलता है? कष्ट, तिरस्कार, अपमान, सास ससुर की झिड़कियां, ताने, और यहाँ तक कि जिसे वो तन मन धन से अपना पति मानती हैं, उसकी भी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पति के पास प्यार, दुलार और संतावना का मलहम नहीं मिलता। खाने को दो जून की रोटी भी मसर नहीं होती। आज हर घड़ी पारिवारिक परंपराएं, सामाजिक नियमों को, रीति रिवाजों को तोड़े जा रही हैं। यही कारण है कि आज समाज में असफल रिश्तों का मुकाम काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है। पहले सत्ता लड़के वालों की होती थी, अब लड़की वालों की है। आखिर कब तक ये दिलों का रिश्ता पैसों के रिश्ते में तब्दील होगा? आखिर कब तक ये खुशियों का रिश्ता समझौता बनता रहेगा? आखिर कब तक सब कुछ जानने के बावजूद हम सब सहते रहेंगे, वो सिर्फ एक अच्छे रिश्ते के लिए जिसका आज के समय में कोई वजूद नहीं होता? आखिर कब तक जिए घुटन भरी जिंदगी? समाज में फैली गंदगी और अंध

0: मान्यताओं को हमें मिटाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, घर वालों का, समाज का विरोध भी सहना ही पड़ेगा। यह कोई नई बात तो नहीं, क्योंकि क्रांति के चरण विरोध, असहयोग तथा पद की ऊंचाई निचाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ना होगा। हमें क्रांति लानी होगी अपने अधिकारों के लिए, समानता के लिए, समान प्रद जीवन यापन के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। फिर चाहे हमें अपनी सामाजिक परंपराओं को, संस्कारों को और रूढ़ियों को बदलना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि जिसके पैर में विवाहिक फटती है उसे ही दर्द की अनुभूति होती है। परंपराओं ने नारी हृदय को कुचल कर रख दिया है, वह अपनी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकती, उसके होठ मर्यादाओं ने सिल दिए हैं। इन्हीं छलनी हुई भावनाओं और सिले हुए होठों को हमें जगाना है, चाहे हमें कितना ही विरोध सहना पड़े, हार नहीं माननी है। उस भारतीय नारी के लिए जो त्याग की नारी मानी जाती है, जैसे लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा और कांटे से कांटा निकलता है, बिना आवाज उठाए विजय नहीं पाई जा सकती। लड़कियां केवल उपभोग की वस्तु नहीं अथवा नौकरानी नहीं, हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। ये अब हम समाज को बताएंगे अपने नारी तत्व के लिए।
1: तो बहनों, सुनी हमारी आज की खास वार्ता। वार्ताकार थी सारिका सक्सेना, विषय था विवाह और सामाजिक परिवेश। बढ़ते हैं एक और लोकगीत की ओर, पर उससे पहले एक छोटा सा त्राल।

बहनों, वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बहनों, बेशक मौसम में ठंडक है अभी भी, अच्छी बात है, लेकिन गर्मी पड़ेगी, अच्छे से पड़ेगी, हम ये भी जानते हैं, और जेठ का महीना शुरू हो गया है, तो बेहतर यही है कि आप बचाव करके चलें, गर्मी में विशेष ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का, ठंडी चीज़ों का सेवन करें, जो कि आपको आंतरिक रूप से ठंडक बनाए रखेंगे, जिससे कि आप जब बाहर खेतों में भी काम करें, घर से बाहर भी जब आप अपने पशुओं को उनका चारा पानी सानी जो किया जाता है सब, वो सब भी करें, तो आपको गर्मी से ज़्यादा परेशानी ना हो। इन्हीं बातों के साथ आगे आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।

तभी हमारी ग्रामीण अंचल की बहनें सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल पनघट। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कंवल सिंधु की गाई चंद गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कंवल सिंधु की गाई चंद गजलें। इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: been repeatedly ravaged and plundered by invaders over centuries. Every time, devotees and rulers have rebuilt it and restored its lost glory. Somnath Temple, therefore, stands as a testimony to India's unshattered faith that has risen victorious over repeated assault over centuries. The festivities will culminate on 11th of this month with a grand Kumbh Abhishek at the temple spire using water from 11 sacred shrines. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: On to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Delhi last night. Chasing the victory target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने. उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी. टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की. और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. अब समाचार विस्तार से. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है. भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. एक रिपोर्ट.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया.
4: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब. आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब.
3: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली. आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया. प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए. मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे. इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया. प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में

0: श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को

0: और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त।

0: किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का गायन और राग मिश्र तिलक कामोद में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का ठुमरी गायन। सबसे पहले आइए सुनते हैं पंडित जगदीश प्रसाद का गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित जगदीश प्रसाद का गायन और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग मिश्र तिलक कामोद में गायन। इसी के साथ ही कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है ताजमहल।

अभी आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी रोशन ने, गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम था ताजमहल। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म नवरंग का ये गीत। गीतकार हैं भरत व्यास, संगीतकार हैं सी रामचंद्रन।

श्रोताओ, आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नवरंग का ये गीत। गीत को लिखा था भरत व्यास ने, संगीतबद्ध किया था सी रामचंद्र ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में फिल्म सुहागन का ये गीत। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुहागन का ये गीत। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। इसी के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म विवाह का ये गीत। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में समीर की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है संजीव दर्शन ने। फिल्म का नाम है मन।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मन का ये गीत। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे संजीव दर्शन। श्रोताओं, लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं शान और अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर की शब्द रचना को। धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने, फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

अभी आप सुन रहे थे शान और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म कल हो ना हो का ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को, जिसकी धुन बनाई है जीत प्रीतम ने। फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कृष का ये गीत। गीत को लिखा था इब्राहिम अश्क ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। इस गीत के साथ ही लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:30 हो रहे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोबि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा।

0: स्थान अंक तालिका में चौथे, जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची।

शाम 5:10 का समय रहेगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या का। शाम 5:30 का समय रहेगा हमारी युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा ग्रीन ऑस्कर। साथ ही होगी अक्षता शर्मा की वार्ता, जिसका विषय होगा सेवा, संयम और संवाद के प्रतीक गोपाल कृष्ण गोखले। साथ ही होंगे सेगमेंट्स, आइए जानें इस सप्ताह आज के हम सफर ताकत वतन की हमसे है। इसके अलावा आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का। शाम 6:00 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्यालोक का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा प्राकृतिक खेती और गौपालन। साथ ही होगी वार्ता, जिसका विषय होगा महाराणा प्रताप जयंती। साथ ही होगी डॉक्टर भूमिराज सिंह की वार्ता, जिसका विषय होगा हरी खाद की उपयोगिता। इसके अलावा जानकारी लीजिएगा मौसम के हाल की, मंडी भाव की और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का।

शाम 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मजदूर मंडल का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह। साथ ही होगी वार्ता जिसका विषय होगा ए भाई जरा देख के चलो। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सत्य प्रकाश। साथ ही होंगे सेगमेंट्स आज का प्रश्न, सेहत टिप्स, ज्ञान सागर, नई खोजें, और आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का।

शाम 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज डॉक्टर सुनीता रानी घोष आपको जानकारी देंगी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में नारी संचेतना विषय पर। शाम 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। शाम 8:00 का समय रहेगा फिल्मों से भजनों के कार्यक्रम भजन संध्या का। रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रात्रि 9:30 का समय रहेगा रेडियो पत्रिका संस्कृति भारती का, जो अनुप्रसारित होगी हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 का समय रहेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का, जो अनुप्रसारित होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या।

जिसमें आज का पहला गीत हमने लिया है फिल्म ईश्वर से, नितिन मुकेश, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गोपी से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लो मैं आ गया से। उदित नारायण, नूतन और साथियों की आवाज में देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन रहे हैं फिल्म आदि पुरुष से। साचे टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में मनोज मंतशेर शुक्ला के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है साचे टंडन और परंपरा टंडन ने ही।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार युवा साथियों, मैं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त दीक्षा परिहार स्वागत करती हूं अपने सभी युवा साथियों का उनके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहां हम हमेशा की तरह यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आज की हमारी खास चर्चा जुड़ी है एक ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड से जिसे लोग प्यार से कहते हैं ग्रीन ऑस्कर, यानी विटली अवार्ड्स। दोस्तों, जैसे फिल्मों की दुनिया में ऑस्कर का नाम बहुत बड़ा माना जाता है, वैसे ही एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया में विटली अवार्ड्स का बहुत सम्मान है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो नेचर, जंगल, वाइल्ड लाइफ और हमारी धरती को बचाने के लिए ग्राउंड लेवल पर शानदार काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत साल 1993 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और इस अवार्ड को शुरू करने का मकसद था दुनिया भर के उन लोगों को पहचान देना जो नेचर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ग्राउंड लेवल पर बेहतरीन काम कर रहे थे। इसके पीछे सोच ये थी कि कई लोग जंगलों, जानवरों और पर्यावरण को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनका काम दुनिया के सामने नहीं आ पाता। और ऐसे ही अनसंग हीरोज को प्लेटफॉर्म देने के लिए विटली अवार्ड शुरू किए गए और धीरे धीरे ये अवार्ड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रतिष्ठित बन गए। हम आज इसे एनवायरनमेंट सेक्टर का ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका सम्मान और पहचान पूरी दुनिया में है। साथियों, हर साल अलग अलग देशों से चुने गए कंजर्वेशन लीडर्स को यह सम्मान दिया जाता है। इन विजेताओं को सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग और ग्लोबल सपोर्ट भी मिलता है। और सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे देश के भी कई एनवायरमेंटल हीरोज को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इस साल भी 6 विजेताओं को ये अवार्ड मिला है, जिनमें से 2 भारतीय हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, अभी हाल ही में परवीन शेख को इंडियन स्किमर पक्षी के संरक्षण के लिए अपना काम समर्पित करने के लिए ये अवार्ड मिला है। और दूसरी महिला है बरखा सुब्बा, जिन्होंने दार्जिलिंग क्षेत्र में हिमालयी सैलामेंडर के नाजुक आवास की रक्षा के लिए मान्यता प्राप्त की। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब ऐसे अवार्ड्स हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव सिर्फ बड़ी बड़ी पॉलिसीज से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लोकल एक्शन से

भी आता है। अब जरा सोचिए, अगर हर युवा एक पेड़ लगाने का संकल्प ले, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करे, पानी बचाए और अपने आसपास सफाई रखे, तो हमारी धरती कितनी खूबसूरत बन सकती है। दोस्तों, आज का यूथ सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक सीमित नहीं रहा है। आज का युवा ग्रीन फ्यूचर की बात करता है, सस्टेनेबिलिटी को समझता है और नेचर के लिए आवाज उठाता है, और यही सोच हमें उम्मीद देती है। दोस्तों, विटली अवार्ड्स हमें ये सिखाते हैं कि धरती को बचाने के लिए सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक लेने का, तो चलिए आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: दोस्तों, अब समय है हमारी विशेष वार्ता का। आज की इस प्रेरणादायक प्रस्तुति का विषय है सेवा, संयम और संवाद के प्रतीक गोपाल कृष्ण गोखले, और वार्ताकार हैं अक्षिता शर्मा। दोस्तों, आज गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती के अवसर पर हम याद कर रहे हैं उस महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और विचारक को जिन्होंने भारत के सार्वजनिक जीवन को नई दिशा दी। वे उन नेताओं में थे जिन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का रास्ता माना।
1: गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन केवल एक राजनेता की कहानी नहीं है बल्कि वह एक ऐसे विचारक, शिक्षक और समाज सेवी की यात्रा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नैतिकता, संयम और संवाद की दिशा दी थी। उन्हें संयम, सेवा और संवाद के प्रतीक कहना बिल्कुल उचित है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन महान नेताओं में से थे जिनका जीवन संयम, संतुलन और नैतिकता का अद्भुत उदाहरण है। वह केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि एक विचारक, शिक्षक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने कभी भी क्रोध या उग्रता का सहारा नहीं लिया बल्कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से खोजा। गोखले जी एक प्रमुख नेता भी थे, मध्यम मार्गी विचारधारा के समर्थक भी थे जो मानते थे कि सुधार संवाद और सहयोग से ही संभव है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध तो किया लेकिन हमेशा संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत संयम और धैर्य में होती है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से त्याग और राष्ट्रहित के लिए समर्पित कर दिया। वे न केवल एक कुशल राजनीतिक थे बल्कि एक समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे। गोखले जी का मानना था कि देश की सच्ची उन्नति केवल राजनीति से नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसी सोच के साथ उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था ऐसे लोगों को तैयार करना जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करें। गोपाल कृष्ण गोखले को संवाद का प्रतीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत, समझदारी और शांतिपूर्ण विचार विमर्श से ही संभव है। उनका विश्वास था कि संघर्ष और टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से ही स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता थे। उनका तरीका था तर्क, तथ्य और शालीन भाषा के जरिए अपनी बात रखना। वे मानते थे कि अगर अपनी बात सही ढंग से रखी जाए तो विरोधी भी उसे समझ सकते हैं।

0: गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन हमें यह सिखाता है कि संवाद ही किसी भी समाज की प्रगति और एकता का सबसे मजबूत आधार होता है। आज के समय में जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, गोखले जी के आदर्श हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हम मतभेदों को संवाद से सुलझाएं, अपने कर्तव्यों को सेवा भाव से निभाएं और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें। उनके सिद्धांत केवल इतिहास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी एक बेहतर और सशक्त भारत के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। महात्मा गांधी भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने उनसे सत्य, सेवा और संयम की प्रेरणा प्राप्त की। गोखले जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं बल्कि चरित्र, धैर्य और सेवा भावना से बनता है। गोपाल कृष्ण गोखले के विचार वर्तमान समाज में भी अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं। आज का युवा यदि गोपाल कृष्ण गोखले के आदर्शों को अपनाए तो वह न केवल अपने जीवन में सफल हो सकता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकता है। संयम उन्हें निर्णय लेना सिखाएगा, सेवा उन्हें मानवता से जोड़ेगी और संवाद उन्हें बेहतर नेता बनाएगा। गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने राजनीति को नैतिक मूल्यों और ईमानदारी से जोड़ने का प्रयास किया। गोखले का मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। वह महिला शिक्षा, राजनीतिक समानता और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रबल समर्थक थे। वैचारिक मतभेदों के बावजूद बाल गंगाधर तिलक गोखले के देश प्रेम को देखते हुए उन्हें भारत का हीरा कहते थे। गोखले ने सिखाया राष्ट्र निर्माण केवल आंदोलनों से नहीं बल्कि जन जागरण, शिक्षा और व्यक्तिगत चरित्र के उत्थान से होता है। वे मानते थे कि शिक्षा ही समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने के लिए विधानमंडल में ऐतिहासिक विधेयक पेश किया। गोखले जी ने गरीबों के उद्यान के लिए भी अनेक कार्य किए। अकाल के समय राहत कार्य हो या महिला शिक्षा का समर्थन, गोखले हमेशा सक्रिय रहे। उन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी और औद्योगिक श्रमिकों के लिए नाइट स्कूल भी शुरू किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सेवा के लिए भी अनेक कार्य किए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और गांधी जी के साथ मिलकर अनेक अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। उनकी सेवा का अंतिम संदेश था कि मेरी जीवनी लिखने या प्रतिभा बनाने के समय व्यर्थ ना करें बल्कि अपनी पूरी आत्मा भारत की सेवा में झोंक दें। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वाधीनता संग्राम में संवाद और तर्क के सबसे प्रखर प्रतीक थे। उनका मानना था कि हिंसा का टकराव के बजाय तर्कपूर्ण बहस और संवैधानिक संवाद के माध्यम से बड़े बड़े सुधार लाए जा सकते हैं। गोखले की संवाद शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे अपने घोर वैचारिक विरोधियों के साथ भी सम्मानजनक संवाद बनाए रखते थे। गोखले जी ने सिद्ध किया कि लोकतंत्र की असली ताकत तीखे नारों में नहीं बल्कि सार्थक और तर्कपूर्ण संवाद में निहित है। आज के समय में जब समाज में मतभेद बढ़ रहे हैं, तब गोखले जी के विचार और आदर्श और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था सेवा, संयम और संवाद के प्रतीक गोपाल कृष्ण गोखले, और वार्ताकार थी अक्षिता शर्मा। आइए अब जानते हैं एक ऐसे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जीव के बारे में जिसे प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोबर भृंग यानी डंग बीटल की। साथियों, गोबर भृंग देखने में भले ही छोटा हो लेकिन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। यह कीट जानवरों के गोबर को मिट्टी में मिलाने का काम करता है जिससे कि जमीन की उर्वरता बढ़ती है और प्राकृतिक सफाई भी बनी रहती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे नेचर का रिसाइकलिंग एक्सपर्ट भी कहते हैं। डंग बीटल गोबर को गोल आकार में बनाकर जमीन के अंदर ले जाता है, वहीं वह अपने अंडे देता है और यही प्रक्रिया मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देती है। इससे किसानों को भी फायदा होता है क्योंकि मिट्टी अधिक उपजाऊ बन जाती है और केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम हो जाती है।

है। दोस्तों, आज जब हम बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम की बात करते हैं, तब ये समझना जरूरी है कि प्रकृति का हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी खास भूमिका निभाता है। इसलिए हमें सिर्फ बड़े जानवर नहीं, बल्कि ऐसे छोटे जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, डंग बीटल हमें सिखाता है कि छोटा काम भी प्रकृति के लिए बड़ा योगदान बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डंग बीटल के बारे में, और अब समय है हमारे प्रेरणादायक सेगमेंट ताकत वतन की हमसे है का। और आज उनकी जयंती के अवसर पर हम बात करेंगे दो महान विभूतियों की, एक जिन्होंने अपने शब्दों और विचारों से भारत की आत्मा को आवाज दी, और दूसरे

माहौल हमें सिखाता है कि छोटा काम भी प्रकृति के लिए बड़ा योगदान बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डंग बीटल के बारे में, और अब समय है हमारे प्रेरणादायक सेगमेंट ताकत वतन की हमसे है का। और आज उनकी जयंती के अवसर पर हम बात करेंगे दो महान विभूतियों की, एक जिन्होंने अपने शब्दों और विचारों से भारत की आत्मा को आवाज दी, और दूसरे जिन्होंने वीरता और स्वाभिमान को मिसाल कायम की है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर और महाराणा प्रताप की। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि ही नहीं बल्कि महान चिंतक, साहित्यकार और शिक्षाविद भी थे। उन्होंने भारत को उसका राष्ट्रगान जन गण मन दिया। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, मानवता और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम दिखाई देता है। वे मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को स्वतंत्र सोचने की ताकत दे। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप वीरता, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण के प्रतीक थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध आज भी उनके साहस और संघर्ष की कहानी सुनाता है। साथियों, एक ने कलम से राष्ट्र को शक्ति दी तो दूसरे ने तलवार से मातृभूमि की रक्षा की, लेकिन दोनों का संदेश एक ही था, देश सबसे ऊपर है। आज की युवा पीढ़ी के लिए इन महान विभूतियों का जीवन बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। तो आइए, उनकी जयंती पर हम भी ये संकल्प लें कि हम अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों का सम्मान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, सेगमेंट ताकत वतन की हमसे है मैं इतना ही। आइए अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

साथियों, अब वक्त हो चला है आपको इस सप्ताह की कुछ खास खबरों के बारे में जानकारी देने का। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में, जिसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। कई देशों के युवाओं ने इस पहल को प्रकृति से भावनात्मक जुड़ाव का शानदार उदाहरण दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अभी कुछ दिनों से गर्मी से जहां थोड़ी राहत थी, वहीं आज तेज धूप ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। सुबह ठंड और दिन में चमचमाती धूप, दोस्तों यही वो मौसम है जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। ऐसे में अपना और अपने परिवारजनों का बहुत बहुत ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी यहीं संपन्न होता है। अपने होस्ट दीक्षा को आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। प्रस्तुत है हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

श्रोताओं, आज के ग्रामलोक कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। श्रोताओं, जेठ माह चल रहा है यानी भीषण गर्मी का समय, लेकिन अभी कुछ दिनों से मौसम ने गर्मी से सबको राहत दे दी है। इन दिनों बहुत सी जगह हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जो खाली पड़े खेतों के लिए फायदेमंद तो है। इस समय की बरसात या बूंदाबांदी से खेतों में नमी बढ़ेगी, जिसका लाभ कुछ दिनों बाद खरीफ फसल की बुवाई के समय मिलेगा। साथ में जायद की फसल में भाई ये पानी कुछ फसलों के लिए फायदा भी करता है। किसान साथियों, हर एक मौसम का सीधा असर हमारी कृषि पर पड़ता है, खासकर प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बरसात, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हमारी कृषि को बहुत नुकसान होता है, जिससे किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इसी वजह से खेतों से ज्यादा लाभ लेने के चक्कर में हम किसान भी अपनी फसलों में अत्यधिक रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे हैं। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता खराब होने लगी है। रसायन युक्त अनाज, फल, सब्जी के सेवन से बहुत सी बीमारियां होने लगी हैं। साथ में रासायनिक खाद का या रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट होती जा रही है। किसान साथियों, हमें अपने खेतों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेने के लिए प्राकृतिक खेती पर जाना चाहिए। जी हां साथियों, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, जिसमें रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। प्राकृतिक खेती के लिए सिर्फ एक देसी गाय की जरूरत पड़ती है। देसी गाय का गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करके हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इसके अलावा खेत और उसके आसपास के प्राकृतिक संसाधनों एवं घर की रसोई में मिलने वाली सामान से ही प्राकृतिक खेती की जा सकती है। किसान साथियों, प्राकृतिक खेती और गौ पालन एक साथ खेती का है सबसे अच्छा रूप है, यानी किसान के घर में गाय और खेतीबाड़ी का काम, यही तो है भारत के गांव की सही तस्वीर। जी हां किसान भाइयों, एक देसी गाय पालकर हम कई बीघा प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती और गौपालन यानी पशु आधारित खेती एक दूसरे के पूरक हैं। यह खेती की वह प्राचीन पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर गाय के गोबर और गौमूत्र को प्रयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक खेती में गौपालन एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होता है। यह प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें पारंपरिक तरीके से सारे जो तरीके हैं वो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, जो रसायन मुक्त स्थानीय चीजों और अन्य सामग्री के साथ साथ देसी गाय पर आधारित है। इसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसके प्रमुख घटक हैं जीवामृत, आच्छादन, वापसा और बीजामृत। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती की जब हम फसल बोने का काम करते हैं, उस समय बोने से पहले जो बीज है उनका हम बीजामृत से उपचारित करते हैं। बीजामृत गाय का गोबर, गौमूत्र और चूने के मिश्रण को हम कहते हैं, जो बीजों को फंगस या अन्य बीमारियों से बचाता है। इसके बाद प्राकृतिक खेती में सबसे प्रमुख है जीवामृत, जो कि गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल या बेसन और पीपल या बरगद के नीचे की वह मिट्टी होती है जो उपजाऊ होती है। इन सबको हम एक 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम में मिश्रण के रूप में घोल लेते हैं। यह 200 लीटर का जीवामृत घोल एक एकड़ भूमि में उपयोग में लिया जाता है। इस बीजामृत घोल को सिंचाई के समय या फसल की बुवाई के 20-20 दिन के अंतराल से हम अपनी फसल में देते हैं। किसान साथियों, बीजामृत प्राकृतिक खेती में फसल के जो बीज होते हैं उनको उपचारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ऐसे ही जीवामृत प्राकृतिक खेती में फसल के लिए पोषण का काम करता है। साथ में खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाने का काम करता है। यह सूक्ष्म जीव फसल की अच्छी उपज के लिए लाभकारी होते हैं। इसके बाद प्राकृतिक खेती में आच्छादन आता है। इसमें फसल अवशेष या सूखे पेड़ पत्तियों के जो खेती के ऊपर हम परत से ढक देते हैं, जिससे खेत में नमी बनी रहती है।

और फसल में सिंचाई के समय हमें पानी की मात्रा की बहुत कम जरूरत पड़ती है। किसान साथियों, खेत की मिट्टी में पानी और हवा के बीच सही संतुलन बना रहे, जिससे जड़ों तक पोषक तत्व आसानी से पहुंच सकें, इसे हम प्राकृतिक खेती में वाफसा कहते हैं। पौधों के बेहतर विकास के लिए मिट्टी के दो कणों के बीच वाष्प और हवा का संतुलन वाष्पा कहलाता है। किसान साथियों, इस स्थिति को जबकि 50% वाष्प और 50% हवा होती है, वह उसे हम वाप्सा कहते हैं। लेकिन वाप्सा जो भूमि में जीवामृत के प्रयोग और आच्छादन से होता है, प्राकृतिक खेती में बाहर से कीटनाशक या खाद खरीदने की जरूरत नहीं होती है। जी हां किसान साथियों, भाई अगर फसल उगाते हैं और उस वक्त उसमें कोई रोग या कीट लग जाते हैं, तो ऐसे में हमारा ध्यान सीधे तौर पर रासायनिक कीटनाशकों पर जाता है। तो जहां हमने अपनी फसल को उगाने के लिए सभी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, साथ में गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल किया, यानी हमने बिल्कुल भी रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर फसल को कोई रोग लग जाए या कीट लग जाते हैं, तो भाई ऐसे में हम कीटनाशकों का कौन सा उपयोग करें? तो वो भी हमें प्राकृतिक रूप से बनाए हुए कीटनाशक ही इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि नीम की निमोली, मिर्च और लहसुन से बने कीटनाशक, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक होते हैं और बहुत से रोग और कीटों को फसल को बचा के रखते हैं, जिससे खेती की लागत भी कम आती है और गुणवत्ता वाली रसायन मुक्त पैदावार मिलती है, जिसको बेचने पर अच्छी कीमत भी मिलती है। जी हाँ किसान भाइयों, भाई रसायन मुक्त हम पैदावार लेते हैं तो कृषि उत्पादों की ऐसी खेप जिसमें रसायन नहीं होते हैं, वो बाजार में भी हमें अच्छी कीमत देते हैं। कम लागत और अच्छी कीमत मिलने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती में पानी की कम खपत होती है, उत्पादन लागत लगभग न के बराबर होती है। सबसे मुख्य बात, रसायनों के बिना लंबे समय में मिट्टी की जैविक गुणवत्ता सुधार होता है और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बेहतर हो जाती है। किसान भाइयों, गौ आधारित प्राकृतिक खेती के इतने सारे लाभ हैं, तो इसे अपनाएं और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के साथ साथ खेत की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएं और अपनी आय में वृद्धि करें। किसान भाइयों, राष्ट्र के विकास के लिए हम किसानों की मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक ऐसे ही राष्ट्र सुरक्षा के लिए देश में वीर योद्धाओं की जरूरत होती है। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास बहुत से वीर योद्धाओं की गाथाओं से भरा हुआ है। आज 9 मई का दिन है। आज ही के दिन यानी 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वे मेवाड़ के 13वें शासक और उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और कई सालों तक संघर्ष किया। मुगल शासक अकबर के खिलाफ उनके संघर्ष, स्वाभिमान और 1576 के हल्दीघाटी युद्ध के लिए उन्हें वीरता से याद किया जाता है। आज के दिन उनकी जयंती पर देश भर में, खासकर राजस्थान में, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और उनके घोड़े चेतक की याद में घुड़सवारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। श्रोताओं, महाराणा प्रताप को आज उनकी जयंती पर उनकी वीरता के लिए हम सब शत शत नमन करते हैं। आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपका संगीतमय मनोरंजन करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर लोकगीत का।

श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम में बात करते हैं ग्रामीण अंचल में खेतीबाड़ी के लिए नई खोजों के बारे में। हाल के वर्षों में कीटनाशकों की खोज में अच्छे परिणाम सामने आए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कम जहरीले और अधिक प्रभावी संसाधन खोजना है। जैसे नैनो कीटनाशक, यह पौधों की पत्तियों पर मजबूती से चिपक जाते हैं, जो न केवल कीटनाशकों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि बारिश में घुलते नहीं हैं, जिससे किसान कम मात्रा का प्रयोग करके भी बेहतर परिणाम ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि के लिए माइक्रोबियल कीटनाशकों एक अच्छी खोज है। इसमें बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का उपयोग करके माइक्रोबियल कीटनाशक विकसित किए जा रहे हैं, जो केवल लक्षित कीटों को नष्ट करके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे अगर हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर कीट तो मर जाते हैं लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इसके अलावा कीटनाशकों में नीम और जैविक कीटनाशक एक नई खोज है। इसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नीम और लहसुन के अर्क को अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है, जो कीटों को सुखाकर मार देते हैं। तो यह ऐसी खोज है जो कीटनाशकों को बेहतर बनाने की ओर एक अच्छा कदम है। ठीक ऐसे ही आज के इस समय में कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति भी आई है, जिससे खेती की लागत और मेहनत कम हुई है। इसमें हमारे कृषि यंत्र, जो नई नई खोज के उपरांत और नई नई तकनीकों के इस्तेमाल के बाद सामने आ रहे हैं। सबसे प्रमुख है इनमें आधुनिक और स्मार्ट कृषि यंत्र, जैसे ड्रोन तकनीकी। इसका उपयोग कीटनाशकों और उर्वरकों के सटीक छिड़काव के लिए किया जा रहा है। इसके समय और लागत दोनों

0: की कमी होती है। यानी कि अगर हम ड्रोन के द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं तो समय भी कम लगता है और लागत भी कम आती है। भाई अगर मनुष्यों द्वारा छिड़काव किया जाता है तो उनके छिड़काव का जो खर्चा आता है वो बहुत आता है। ऐसा ही एक एआई आधारित ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के जीपीएस के माध्यम से चलाया जाता है, जो खेत की जुताई, बुवाई और कटाई कर सकते हैं। ऐसे ही कृषि रोबोट का उपयोग हाल ही में बहुत चलन में आया है, जो फल तोड़ने, खरपतवार हटाने और फसलों की निगरानी के लिए किए जा रहे हैं। किसान साथियों, इस आधुनिक युग में अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से नई तकनीकी का कृषि में प्रयोग करें और खेती किसानी में मेहनत और लागत दोनों कम करके लाभ लें। जी हां किसान भाइयों, आज के इस आधुनिक दौर में हर क्षेत्र में नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके बहुत लाभ लिया जा रहा है, तो हमारी कृषि भी क्यों पीछे रहे। कृषि में भी आप नई खोजों का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, हमारे खेतों से रसायन मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए गोबर की खाद और जैविक खाद के साथ साथ खेतों के लिए हरी खाद बहुत लाभकारी है। क्या है यह हरी खाद? हरी खाद और इसकी उपयोगिता क्या है, इस पर आज हमारी वार्ता में डॉक्टर भूमिराज सिंह आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं यह वार्ता।
1: किसान भाइयों, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु परिणाम उतने उत्साहजनक नहीं प्राप्त हो रहे हैं जितनी की आशा की जा रही थी। अगर हम कारणों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति में निरंतर गिरावट आ रही है, जिसका प्रमुख कारण मृदा में घटता हुआ जैविक कार्बन अंश है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें गोबर की खाद अथवा हरी खाद आदि के प्रयोग पर विशेष जोर देना होगा। परंतु किसान भाइयों के पास घटती पशु संख्या के कारण तथा उपलब्ध गोबर के अधिकांश भाग का ईंधन के रूप में प्रयोग होने से गोबर की खाद की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिस कारण हमें दूसरे विकल्प अर्थात हरी खाद का कृषि में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे न केवल मृदा में भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में सुधार होगा बल्कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता भी आसानी से हो जाएगी। हरी खाद की कृषि में उपयोगिता विरजिल नाम के व्यक्ति ने ईसा पूर्व ही यह सिद्ध कर साबित कर दी थी कि दाल वाली फसलों के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। हरी खाद से हमारा आशय मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने व भौतिक अवस्था में सुधार लाने के लिए हरी वानस्पतिक सामग्री जैसे कि उपयुक्त फसल उसी खेत में उगाकर उसके वानस्पतिक भागों को खेत में ही मिलाकर उसके गलन सड़न की प्रक्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खाद के प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। हरी खाद के प्रयोग से भूमि के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में सुधार होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इस खाद के प्रयोग से भूमि की पानी एकत्रित करने की क्षमता में सुधार होता है, जिस कारण वर्षा पर आधारित फसलों की पैदावार पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हरी खाद का कृषि में प्रयोग करने से मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में आशातीत वृद्धि होती है। इस खाद के प्रयोग से भूमि में वायु संचार में सुधार के साथ ही साथ लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में भी आशातीत वृद्धि होती है। हरी खाद के प्रयोग से रासायनिक खादों पर होने वाले खर्चे को कम करते हुए कृषि लागत को घटाया जा सकता है। इस खाद के प्रयोग से भूमि के पीएच मान में कमी आती है, जिस कारण मृदा की क्षारीयता में सुधार होता है। हरी खाद के सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अतः अम्लीय माध्यम से मिट्टी में फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है, वे कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें हम

0: हरी खाद बनाने हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। फसल का चुनाव करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फसल तेजी से बढ़ने वाली तथा उसकी पत्तियां, शाखाएं व तना सामान्यतः मुलायम व नर्म होनी चाहिए, जिससे कि भूमि में दबाने पर वह सड़ गल सके। पौधों में शाखाएं व पत्तियां अधिक से अधिक हों। फसल की जल व पोषण तत्व संबंधी मांग कम से कम हो। फसल की जड़ें गहराई तक जाने वाली होनी चाहिए, ताकि वह गहराई से पोषक तत्व प्राप्त कर उसे ऊपरी मृदा में छोड़ दें। फसल फलीदार होनी चाहिए, ताकि उस फसल के द्वारा भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिकाधिक स्थिरीकरण हो सके। फसल इस प्रकार की होनी चाहिए जो जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों, जैसे कि अधिक या कम ताप, कम या अधिक वर्षा आदि को सहन करने की क्षमता रखती हो। अगर उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम देखें तो ढेंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया व ग्वार आदि प्रमुख फसलों के साथ ही साथ बरसीम व मटर को भी हरी खाद हेतु उगाया जा सकता है। हरी खाद हेतु ढेंचा सर्वाधिक रूप से उगाया जाता है। यह सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी बुवाई जुलाई तक की जा सकती है। हमें हरी खाद की बुवाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत में अग्रिम फसल कब बोनी है। ढेंचा की प्रमुख फसल को 30, 40 या 60 दिन की अवस्था पर खेत में मिलाया जा सकता है, जिससे हमें क्रमशः 30, 70 व 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्राप्त होती है। ढेंचा की बुवाई हेतु एक या दो जुताई उपरांत 15 या 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ढेंचा के बीजों को एक दिन पूर्व पानी में भिगोकर छिड़काव विधि से बो सकते हैं। प्रथम सिंचाई एक सप्ताह बाद करनी चाहिए। यदि वर्षा न हो तो 60 दिनों की फसल हेतु 4 या 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। वैसे तो 30 दिनों की फसल को भी हरी खाद हेतु प्रयोग किया जा सकता है, परंतु सबसे अच्छी हरी खाद उस वक्त प्राप्त होती है जब फसल में फूल आने की शुरुआत हो। प्राय यह अवस्था इस फसल में 60 दिनों पर होती है। इस अवस्था पर इस फसल को मिट्टी पलटने वाले हल अथवा ट्रैक्टर चले डिस्क हैरो से 15 से 25 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी में दबाया जाना चाहिए। उसके उपरांत खेत में पानी देने से फसल की गलन सड़न की क्रिया तीव्र हो जाएगी और खाद अच्छी बनेगी। हरी खाद हेतु सनई की फसल को भी प्रमुख रूप से उगाया जाता है। यह फसल भी बहुत तेजी से बढ़ती है तथा 10 से 12 सप्ताह में 4 से 5 फुट ऊंची हो जाती है। इसको भी जुलाई तक बोया जा सकता है, जिसके लिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। सनई की 60 दिन की फसल से हमें 80 कुंतल प्रति एकड़ हरी खाद प्राप्त हो जाती है। हरी खाद हेतु मूंग, उड़द, लोबिया तथा ग्वार की फलियों को तोड़ने के बाद अथवा 55 से 60 दिन की अवस्था पर मृदा में मिलाया जा सकता है। इस प्रकार ग्वार व लोबिया की फसल से 50 से 80 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से हरी खाद प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरी खाद कृषि के लिए काफी उपयोगी है। यह न केवल मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाते हुए मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में सुधार करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाती है।
1: किसान साथियों, अभी आपने हमारी वार्ता में डॉक्टर भूमिराज सिंह से हरी खाद की उपयोगिता के बारे में जानकारी ली, और आइए अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस मधुर लोक।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो साथी खालिद तनवीर का नमस्कार। लीजिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज फिर हाजिर है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम मजदूर मंडल। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। और कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर हमारे श्रोताओं को सोच कर रखना है, जिससे जब हम कार्यक्रम के अंत में या मध्य में उसका जवाब दें तो हमारे जागरूक श्रोता अपने सोचे हुए उत्तर को दिए गए जवाब से मिला सकें। तो भाई, आज का प्रश्न आज के दिवस से ही जुड़ा हुआ है और प्रश्न ये है कि आज जन्म लेने वाले इतिहास के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप का संबंध राजस्थान की किस रियासत से था। सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं श्रोताओं, आज आपको बताना है कि हमारे महान क्षत्रिय शासक महाराणा प्रताप का संबंध राजस्थान की किस रियासत से था। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज के दिन की। साथियों, सड़क दुर्घटनाओं, उसमें लगी चोटों और फिर उससे हुई मौतों का न केवल व्यक्तियों पर भयावह प्रभाव पड़ता है, बल्कि समुदायों और देश के मानवीय स्वास्थ्य और वित्तीय संसाधनों पर भी इसका गहरा असर होता है। इससे न केवल दुख और पीड़ा होती है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल की प्रणालियां और उनसे जुड़े लोगों के लिए भी एक समस्या उत्पन्न होती है। तो वहीं दूसरी तरफ दुर्घटनाओं की वजह से देश की संपत्ति भी नष्ट होती है। इस बारे में लोगों का ध्यान बटाने के लिए विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और जिसकी तिथियां यूएनओ द्वारा ही समय आने पर घोषित कर दी जाती हैं। इस साल यानी 2026 में यह 8 से 14 मई तक मनाया जा रहा है। यह यूएनओ द्वारा आयोजित एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान है, जिसका लक्ष्य सड़क सुरक्षा और दुर्घटना निवारण के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? नहीं ना? चलिए, आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में सड़कों पर हर साल लगभग 13 लाख से 15 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 20 से 25 करोड़ लोग घायल भी होते हैं। साथियों, सड़क दुर्घटनाएं सभी आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी हैं। आज के समय में जब लोग अक्सर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे में यूएनओ का सड़क सुरक्षा सप्ताह इसके महत्व को बढ़ावा देने वाला एक बेहद जरूरी सप्ताह माना जाता है। यह दुनिया भर में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात कानून और ड्राइविंग के नियमों का पालन करने की याद भी दिलाता है। सड़क दुर्घटनाएं न केवल दुर्घटना में शामिल लोगों की जान ले लेती हैं, बल्कि उन लोगों पर निर्भर दूसरे लोगों के जीवन को भी, यानी उनके परिवारिक जनों के जीवन को भी तबाह बर्बाद कर देती हैं। हमारी भागदौड़ वाली जीवन शैली में हम सड़क दुर्घटनाओं को अक्सर रोजमर्रा की घटना मान लेते हैं, लेकिन साथियों, संयुक्त राष्ट्र का यह सड़क सुरक्षा सप्ताह लोगों की सोच को बदलने और दुनिया को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। हर वर्ष किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर मनाया जाने वाला सड़क सुरक्षा सप्ताह इस साल 2026 में इस लक्ष्य के साथ मनाया जा रहा है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम कर दिया जाए। इस बार का अभियान मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट 80 देशों में चलाया जाएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा वर्ष 2026 की जो थीम है वो है सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का

0: अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जबकि राष्ट्रीय थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के महान क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को 2026 में सड़क सुरक्षा के लिए ग्लोबल चैंपियन नियुक्त किया है। इस तरह के अभियान में भाग लेने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सड़क सुरक्षा के बारे में खूब ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना। हम लोग अपने अपने इलाके में जागरूकता फैला सकते हैं, अपने सभी दोस्तों और परिवार को सड़क सुरक्षा के बारे में सिखाया जा सकता है। कभी कभी इसकी शुरुआत हम खुद से भी कर सकते हैं, यानी गाड़ी चलाते समय उचित न्यूनतम और अधिकतम गति पर ध्यान देना, यातायात नियमों का पालन करना और सड़क पर अपना ध्यान केंद्रित रखना। यह सब चीजें अपनाकर हम खुद भी जागरूक हो सकते हैं और दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। अपने देश की बात करें तो यहाँ 72% से अधिक दुर्घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने की वजह से ही होती हैं। सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट का प्रयोग करें, कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर पहने, कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अगर पैदल सफर कर रहे हैं तो सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग जरूर करें। सड़कों पर चलते समय या ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल न करें। अगर कोई जरूरी कॉल आए तो गाड़ी को साइड में खड़ी करके बात करें। बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक संकेत यानी लाल, पीली और हरी लाइट्स भी लगी होती हैं। किसी भी तरह का वाहन ड्राइव करते वक्त सभी लोगों को उन लाइट्स का पालन जरूर करना चाहिए। इसके लिए स्कूल स्तर पर ही यातायात नियमों की शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और राज्य की सड़क सुरक्षा दिवस और सप्ताहों जैसे आयोजनों में जरूर भाग लेना चाहिए। इस तरह हम अपने आसपास के लोगों को, अपने पारिवारिक जनों को या स्वयं को इन सब नियमों का पालन करके या बता के सड़क दुर्घटनाओं से बच भी सकते हैं और सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे आयोजनों को सफल भी बना सकते हैं। और साथियों, आइए इसी बात के लिए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं आज की वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश और विषय है ए भाई जरा देख के चलो।
1: ए भाई जरा देख के चलो, आइए श्रोताओं के साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम मिलेंगे उन यात्रियों से जो सड़क मार्ग से निकले हैं अपनी मंजिल की ओर। जी हां श्रोताओं, हम आज आपको ऐसे यात्रियों से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ अपना बल्कि अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डालते हुए सड़क पर वाहन चलाते हैं। वो देखिए कितना घना कोहरा है, यहाँ तो 100 मीटर से अधिक तक दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे रुको रुको, क्या हुआ? सामने ही एक ट्रक खड़ा है जो कोहरे के कारण हल्का सा दिखाई दे रहा है। अरे ये तो सड़क के बीच में ही खड़ा है और न कोई संकेतक दिखाई दे रहा है। आइए पूछते हैं क्या हुआ। अरे भाई साहब, आपने ट्रक को सड़क के बीच में ही खड़ा कर दिया है और नहीं आपने कोई संकेतक लगाया है। ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटना की प्रबल संभावना है। पीछे से आने वाला वाहन आपके ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, जिसमें जान माल का भारी नुकसान होने की संभावना है। भाई साहब, यह ट्रक खराब हो गया है, अब हम इसको कहाँ ले जाएं? चालक महोदय, सबसे पहले कुछ दूरी पहले ही आप संकेतक लगाइए कि आगे ट्रक खराब है, कृपया सावधानी से देखकर धीमी गति से वाहन चलाएं और पेट्रोलिंग वाहन को सूचित कर बिना देरी किए सड़क से बाहर किनारे पर ले जाकर खड़ा करें। इस तरह सड़क के बीच में वाहन खड़ा करना यातायात नियमों के विरुद्ध है। जी हाँ, मैं अभी तुरंत ऐसा ही करता हूँ। श्रोताओ, अब इस सफर को और आगे तय करते हैं। वो देखिए एक मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट लगाए जा रहा है। हाँ, उसके पीछे दो अन्य सवारी भी बैठी हैं। उनके सिर पर भी हेलमेट नहीं है। ये तो स्वयं अपने और अन्य दो यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। शायद इन महाशय को जानकारी नहीं है कि बिना हेलमेट व दो से अधिक दोपहिया वाहन पर सवारी करना

यातायात के नियम विरुद्ध है। अरे भाई साहब, आप इस वैन को देखिए, इसमें न सिर्फ क्षमता से अधिक सवारी बैठी हैं, बल्कि इस वाहन के सभी इंडिकेटर खराब हैं। आइए इस वाहन के चालक से बात करते हैं। हे इन सवारियों के जीवन को खतरे में डालने वाले चालक महोदय, आपका वाहन सड़क पर चलाने के लिए फिट नहीं है और उसमें भी क्षमता से अधिक सवारी हैं। आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी है। क्या आपको यह जानकारी नहीं है कि समय समय पर वाहन की फिटनेस होनी चाहिए और क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना नियम विरुद्ध है? ऐसा न करने पर सड़क दुर्घटना में भारी जान माल की हानि हो सकती है। श्रीमान जी, आप मुझे नियम सिखाने आए हैं, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। अरे चालक महोदय, रोजी रोटी तो तब मिलेगी जब जीवन सुरक्षित रहेगा, इसलिए सड़क पर यातायात के नियमों का अवश्य पालन करें, स्वयं बचें और दूसरों का भी बचाव करें। आइए श्रोताओं, इस आज के सफर में आगे बढ़ते हैं और इस सड़क पर देखते हैं कि दिन प्रतिदिन क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। देखिए देखिए, सड़क पर वह कोई घायल व्यक्ति पड़ा है। आइए एक नेक इंसान का परिचय दें और घायल व्यक्ति की मदद करें। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों, फिर पुलिस पूछताछ में हम परेशान हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है श्रोताओं, आपको एक नवीन जानकारी से अवगत कराते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अब घायल व्यक्ति की मदद करने वाले या जीवन बचाने वाले नेक इंसान से पुलिस कोई पूछताछ नहीं करती और न ही उसको अपनी पहचान देने के लिए बाध्य करती है, बल्कि घायल व्यक्ति की जान बचने पर जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। अरे ऐसा है, तो चलो दौड़कर इस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं और नेक इंसान होने का परिचय देते हैं। श्रोताओं, आपके साथ इस सफर में नाना प्रकार के यात्रियों के साथ आगे चलते हैं। देखिए दोपहिया वाहन को कितनी तेज गति से ये बालक ले जा रहा है। रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, क्यों इतनी तेज गति से वाहन चला रहे हो? अरे मुझे जल्दी घर पहुंचना है, मेरे माता पिता घर पर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहे हो और कानों में भी ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखी है? अरे भाई साहब, मैं एक साथ दो दो कार्य कर रहा हूँ, कानों से गाना सुन रहा हूँ और वाहन भी चला रहा हूँ। अच्छा, दो दो कार्य, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है, अभी तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल ही नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्र 18 वर्ष से कम है। ओ, आपको यह जानकारी है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितनी उम्र से मिलना प्रारंभ होता है, लेकिन यह जानकारी नहीं है आपको कि यदि कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें आपकी गलती नहीं है, फिर भी लाइसेंस न होने के कारण गलती आपकी ही मानी जाएगी, इसलिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए और वाहन चलाते समय ब्लूटूथ या मोबाइल पर बातें करना जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें करना यातायात के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए स्वयं और अन्य यात्रियों की जीवन रक्षा हित यातायात के नियमों का अवश्य पालन करें। आज का सफर तो इतना सुहावना है कि ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं से रक्षा कर उनके परिवार के दायित्वों को पूर्ण करने में मदद करेगा। ये सफर तो विराम लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे भाई देखिए, उनके वाहन के टायरों में हवा बहुत कम है, फिर भी वाहन को तेज रफ्तार से चला रहे हैं और दुर्घटना को स्वयं ही न्योता दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की हानि हो सकती है। गाड़ी या वाहन चलाने से पहले हमें अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए और समय समय पर प्राधिकृत सर्विस सेंटर पर सर्विस कराते रहना चाहिए। वो देखिए, उस वैन में तो नंबर प्लेट भी नहीं है और वाहन की बॉडी भी जर्जर है। लगता है इस वाहन की आयु 15 वर्ष से भी अधिक है। शायद इनको यह जानकारी नहीं है कि वाहन की आयु पूर्ण होने पर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे श्रोताओं, हमारे साथ सफर का आनंद लीजिए और

0: आइए चलते हैं, अगले चौराहे को पार करते हैं। जरा ठहरिए, अभी लाल बत्ती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब हरा संकेतक हमें चौराहे को पार करने के लिए है, हमें तुरंत चौराहा पार करना चाहिए। अरे श्रोताओं, चौराहा तो पार कर लिया, लेकिन आगे तो जाम लगा है। जाम है तो हमें गाड़ी रोककर अपनी ही लेन में इंतजार करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे ये पीछे से हमारी गाड़ी में ऑटो चालक ने टक्कर मार दी और बैकलाइट टूट गई है। चलिए बात करते हैं इस ऑटो चालक से, क्या आपको सामने गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है? आपने ब्रेक क्यों नहीं लगाया? भाई साहब, आपसे क्षमा मांगता हूँ। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को देखकर मैं तेजी से ऑटो को लाया, और इस ऑटो में ब्रेक भी नहीं है और न ही मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, ऑटो भी किराए पर लेकर आया हूँ। ठीक है आप गरीब हैं, लेकिन मेहनत करके जीविका के लिए ईमानदारी से तो कार्य कर सकते हैं। जैसे आप ऑटो चलाते हैं तो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए और ऑटो की सही फिटनेस व सर्विस करवाइए, तथा यातायात के नियम का पालन कीजिए, तथा क्षमता से अधिक सवारी मत बिठाइए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि श्रोताओं को आज हमारे साथ इस सफर में यातायात के नियमों एवं सड़क पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की जानकारी हासिल हुई होगी। और इस सफर के अंत में एक शपथ ये भी लेनी चाहिए कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, तथा तेज रफ्तार व शराब पीकर वाहन न चलाएं।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे आज की वार्ता ए भाई जरा देख के चलो। वार्ताकार थे डॉक्टर सत्य प्रकाश। और साथियों, ए भाई जरा देख कर चलो और सड़क सुरक्षा सप्ताह, दोनों एक तरह से बातें हुई, तो कार्यक्रम में यही तारतम्य बनाते हैं और सुनते हैं यह गीत।
2: बाजू।

और साथियों अब कार्यक्रम में समय है नई खोजों के बारे में बताने का। तो भाई आज की जानकारी ये है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नए ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी के समान है और इसके अध्ययन से पृथ्वी के सुदूर भविष्य का अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस 2 मिशन असल में सन 2026 में चंद्रमा के चारों तरफ मानव भेजने की योजना का एक मिशन है जो सन 1972 के बाद से पृथ्वी की निचली कक्षा से परे पहला मानव युक्त मिशन होगा। और अब बारी है ज्ञान के गहरे सागर में गोता लगाने की और जानने की कि आज ज्ञान सागर में क्या जानकारी दी जाएगी। तो भी आज हम लाए हैं कुछ जानकारी स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के गुरु कहे जाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। सन 1866 में आज ही के दिन रत्नागिरी में जन्मे गोखले जी को देश की पराधीनता शुरू से ही कचोटती रहती थी। राष्ट्रभक्ति की धारा का प्रवाह उनके मन में बचपन से ही था। साथियों गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और समाज सुधारक भी थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य रहे गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। यह नाम पहली बार पंजाब केसरी बाल गंगाधर तिलक ने उनके लिए प्रयोग किया था। इसकी व्याख्या द ग्रेट स्टोन की तरह की जाती है। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ जिन्ना भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कहा जाता है कि आजादी के समय अगर गोखले जी जीवित होते तो जिन्ना देश के बंटवारे की बात रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। गांधी जी को अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा गोखले जी से ही मिली थी जिससे देश की आजादी का रास्ता प्रशस्त हुआ। और अब कार्यक्रम में जान लेते हैं आज के प्रश्न का उत्तर। तो आज का सवाल था कि आज के दिन जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप का संबंध राजस्थान की किस रियासत से था। इसका जवाब है मेवाड़ राज्य से। जी हाँ दोस्तों, सिसोदिया वंश के 13वें शासक महाराणा प्रताप का संबंध मेवाड़ राज्य से था। वर्तमान में मेवाड़ रियासत राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के क्षेत्र में ले लिया गया है। और प्रताप अपनी वीरता, स्वाभिमान और मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कार्यक्रम में चलते चलते जान लेते हैं कुछ हेल्थ टिप्स। और हेल्थ टिप्स की साथियों, गर्मियों के मौसम में एक चीज जो गर्मियों की मेवा कही जाती है वो है ककड़ी, जो गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड, ठंडा और स्वस्थ भी रखती है। ये एक बेहतरीन सुपर फूड है। इसमें लगभग 95% पानी, फाइबर और जरूरी विटामिन होते हैं जो पाचन शक्ति सुधारने, वजन घटाने, बीपी कंट्रोल करने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद भी करते हैं। ककड़ी में कैलोरी लगभग ना के बराबर होती है और फाइबर बहुत होता है जिससे पेट भरा रहता है और इससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। तो चलिए कार्यक्रम में अब करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं यह गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का

0: अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Saira Mujtaba. BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata.

दर्शन और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की अहम भूमिका थी। भारतवर्ष तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि से विभूषित किया था। 1913 में स्वयं उन्हीं के द्वारा अंग्रेजी में सॉन्ग ऑफरिंग्स नाम से अनुदित उनकी काव्यकृति गीतांजलि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और गुरुदेव प्रथम एशियाई नागरिक बने जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ था। एक शिक्षाविद के रूप में शांति निकेतन की स्थापना उनके शिक्षा संबंधी विचारों का मूर्त रूप है। कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार टैगोर ने अपनी कालजयी कृतियों से साहित्य के अक्षय स्रोत को समृद्ध किया। गुरुदेव टैगोर का रचना काल राजनीतिक उथल पुथल, अनिश्चय की स्थिति, तनाव और संघर्ष का युग था। उनका साहित्य न केवल अपने समय का दस्तावेज है, वरन अपने समय से बहुत आगे मनुष्य के आत्मिक, वैचारिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। विश्व का कोई भी महान साहित्यकार नारी संचेतना की संवेदनशीलता से अछूता नहीं रहा। फिर रवींद्रनाथ टैगोर उसके अपवाद कैसे हो सकते हैं? उनके नारी पात्र केवल काल्पनिक नहीं है, वरन वे समाज के सकारात्मक विकास की राह में इस रूप में आज दिखाई देते हैं कि आज की नारी भी उनसे प्रेरित ही नहीं आंदोलित होती है। सबला कविता से नारी स्वयं अपने भाग्य को जीतना चाहती है। वह ईश्वर से ये निवेदन करती है कि हे ईश्वर, उसे वाणी का वरदान दीजिए ताकि उसके भीतर का आवेग सही राह में प्रवाहित हो सके। हे विधाता, आमारे रेखोना वाक्य हीना, रक्ते मोर जागे रुत्र वीणा। गुरुदेव टैगोर के साहित्य पर भारतीय नव जागरण का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उनकी रचनाओं में नारी कहीं करुणाशील, संवेदनशील मानवता की साकार प्रतिमा है तो कहीं नैतिक मूल्यों की विरासत को सहेजती हुई, स्वाभिमान एवं आत्मगौरव के लिए संघर्ष करती हुई सामाजिक रूढ़ियों एवं तथाकथित लक्ष्मण रेखाओं से जूझती है। स्त्री पत्र कहानी के पात्र मृणाल 15 वर्ष के वैवाहिक जीवन के उपरांत पति को पत्र लिखकर घर छोड़ने के निर्णय से पति को अवगत कराती है। वह ऐसे परिवार में नहीं रहना चाहती जो उसका सम्मान नहीं करता तथा जहां एक स्त्री हिंसक तथा पागल पति से छुटकारा पाने के लिए स्वयं को आग लगा लेती है। मृणाल का आक्रोश उस समाज के प्रति भी है जो विवाहित नारी के अपने माता पिता के यहाँ लौटने के रास्ते ही बंद से कर देता है। एक रचनाकार के रूप में टैगोर एक और भारतीय ज्ञान परंपरा के अक्षय कोश वेद पुराण उपनिषद के ज्ञान से आप्लावित है तो दूसरी ओर पाश्चात्य आधुनिक चिंतन भी उन्हें प्रभावित करता है। इसलिए वे भारतीय संस्कृति के शाश्वत तत्वों एवं परंपराओं को नए रूप में व्यक्त करते हैं। उनके पौराणिक नाटक नारी संचेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौराणिक नारी पात्रों को आत्मसजग, मुखर एवं नैतिक शक्ति से ओतप्रोत एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में चित्रित करके वह ये संदेश देते हैं कि पौराणिक नारी पात्रों के चरित्र की पुनर्व्याख्या एवं पुनर्पाठ आवश्यक है। महाभारत की कथा पर आधारित चित्रांगदा ऐसा ही नाटक है। चित्रांगदा एक ऐसी स्त्री है जो सिर उठाकर प्रेम करना और उसकी अभिव्यक्ति करना जानती है। गुरुदेव की नारी संचेतना नारी की भौतिक अर्थों में मुक्ति ही नहीं, अंतर मन की मुक्ति एवं मानसिक दासता से मुक्ति की तलाश है। समाप्ति कहानी की नायिका मृणमयी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। वह स्वतंत्र पक्षी की तरह निश्चिंत महिला है जिसे नारी के पारंपरिक रूप कतई आकर्षित नहीं करते। वैवाहिक जीवन से संबंधित अनेक उलझे हुए सवालों से जूझते हुए वह अंत में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने का निर्णय लेती है। उनके अनुसार नारी सहानुभूति की नहीं बौद्धिक सम्मान एवं प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों के समानता की अधिकारिणी है। घोरे बाईरे उपन्यास की नायिका बिमला राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति तथा सामाजिक स्वातंत्र्य की खोज हेतु संघर्षरत है, जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई। गुरुदेव टैगोर की रचनाओं में नारी पितृसत्ता के बनाए रूपकों को तोड़ती है। उनकी आधुनिक जागरूक बौद्धिक नारी जो केवल त्याग एवं समर्पण की मूर्ति नहीं बल्कि स्वतंत्र विचार एवं इच्छाओं से युक्त है, जिसके व्यक्तित्व में मानवीय जटिलताएं भी हैं, कमियां भी हैं, पर वह निरंतर आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया में रत है और इस प्रक्रिया की पहली शर्त है निडरता, जो टैगोर के नारी पात्रों की पहचान है। नोष्ठ नीड की नायिका चारुलता एक व्यस्त पत्रकार की पत्नी अपने पति के ही समक्ष अपने
देवर अमल के प्रति प्रेम को व्यक्त करती है और अपनी प्रतिभा की उपेक्षा एवं कुंठाओं को उजागर करती है। पति के द्वारा नए जीवन के आरंभ के निवेदन को भी वह अस्वीकार

0: करके एकाकी रहना ही बेहतर समझती है। इसी प्रकार चोखेर बाली की विनोदनी अपने स्वाभिमान एवं जीवन की सार्थकता की उहापोह में त्रस्त है। चोखेर बाली पर ऋतुपर्णो घोष ने तथा नौष्ट नीड़ पर सत्यजीत रे ने चारुलता नाम से 1964 में फिल्म बनाई। शेषेर कोविता उपन्यास की नायिका लोबन्या स्वतंत्र विचारों की स्वामिनी एवं उच्च शिक्षित महिला है, जो ऑक्सफोर्ड से सुशिक्षित ओमित से प्रेम तो अवश्य करती है किंतु विवाह नहीं कर पाती। इस उपन्यास के माध्यम से निश्चय ही वे ये प्रश्न भी उठाते हैं कि प्रेम का अंतिम लक्ष्य क्या विवाह है। अपनी रचनाओं में उन्होंने जिस रूप में नारी को गढ़ा वह तत्कालीन युग में अकल्पनीय था। गुरुदेव टैगोर ने अनेक वर्जनाओं को तोड़ा, यहाँ तक अपने निजी जीवन से संबंधित वास्तविक महिलाओं के प्रति भी उन्होंने भावपूर्ण संवेदनाएं अभिव्यक्त की। अपनी भाभी कादम्बरी देवी के प्रति भी वे लिखते हैं, मेरी वो प्रियतमा कहाँ है जो बचपन में शायद मेरी इकलौती साथी हुआ करती थी। गुरुदेव अपने समय से बहुत बहुत आगे थे, शायद यही वजह थी कि उन्हें अनेक आलोचनाओं को झेलना पड़ा। हर महान व्यक्ति इस पीड़ा से गुजरता है, क्योंकि तब तक शायद उसके युग का औसत समाज उस खुली बड़ी वैचारिक सोच के लिए तैयार नहीं होता। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का निजी जीवन भी अनेक त्रासदियों की महागाथा रहा, किंतु अपने त्रास को उन्होंने सृजनात्मकता की तरफ मोड़ दिया। यह अद्भुत प्रतिभा एवं दिव्य गुणों से युक्त विरले मानव ही कर पाते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में नारी संचेतना, नारी होने के गौरव, नारी के स्वयं के मूल्य, उसके अपने होने और उसके अपने सपनों में निहित है। आज भी हमारा समाज आधी आबादी के प्रति कहाँ संवेदनशील हो पाया है। घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं से आज की नारी नित्य प्रति जूझती है। ऐसे में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं के नारी पात्र यह सीख देते हैं कि हर नारी को अपनी स्वतंत्रता, अस्मिता, पहचान हेतु स्वयं युद्ध लड़ना होगा। सचमुच बाल विवाह, सती प्रथा, अशिक्षा जैसी रूढ़ियों से युक्त तत्कालीन समाज में भी रविन्द्रनाथ टैगोर की नारी हाशिए पर नहीं पुरुष के समान स्थान पर थी, और उनकी रचनाओं में अनेक स्थान पर नारी रचनात्मकता, सकारात्मक बदलाव और अपने साहस के कारण पुरुष से अधिक प्रगतिशील भी दिखाई पड़ती है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनीता रानी घोष की वार्ता, जिसका विषय था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में नारी संचेतना। इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही देर में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेशभर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक

0: आर्थिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
0: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी वानिया सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय तीन दिन कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in

0: पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
1: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
0: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
2: हमारा KCC का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्मकुमार ने आज ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने ऐसे महान राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर बात करने जा रही हूं, जिन्होंने अपने विचारों, त्याग और राष्ट्र सेवा से भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का दीप जलाया। वो महान व्यक्तित्व हैं गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे भारत की आत्मा को समझने वाले ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देश सेवा को समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल तलवार उठाने में नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षित करने, गरीबों को ऊपर उठाने और देश के भविष्य को मजबूत बनाने में होता है। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व सिखाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। कई बार तो घर में इतने पैसे नहीं होते थे कि दीपक जल सके, उस वक्त वो सड़क की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे। ये घटना आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो कठिनाइयां रास्ता नहीं रोक सकती। साथियों, उसके बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र में गहरी समझ विकसित कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे शिक्षक बने। वे मानते थे कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन किया और हजारों युवाओं के जीवन को दिशा दी। उनके व्यक्तिगत जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी सादगी, ईमानदारी और अनुशासन। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले अत्यंत सरल जीवन जीते थे। उनको ना तो धन का लालच था और ना किसी पद का अहंकार। उनका उद्देश्य केवल भारत माता की सेवा था। उन्होंने कभी अपने सुख के बारे में नहीं सोचा, बल्कि हमेशा देश और समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी। आज के युवाओं के लिए उनका जीवन यह संदेश देता है कि महान बनने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि चरित्र और कर्म की आवश्यकता होती है। साथ ही उन्होंने शिक्षक होने के नाते से भारत के प्रत्येक युवा को हिंदुस्तान की झांकी दिखाई और भारत की हर सच्चाई से अवगत कराया।

साथियों, राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के बाद गोखले जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा था, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे और देश की संपत्ति अंग्रेज अपने देश ले जा रहे थे। ऐसे समय में गोखले जी ने अपने ज्ञान और भाषणों से अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी। गोखले जी उस समय कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे। उनका मानना था कि भारत को स्वतंत्रता शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करनी चाहिए। वे हिंसा के विरोधी थे, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं था कि उनमें देशभक्ति की कमी थी। उनका राष्ट्र प्रेम उतना ही प्रबल था जितना किसी क्रांतिकारी का। वे मानते थे कि एक मजबूत और शिक्षित समाज ही स्वतंत्र भारत की नींव बना सकता है। साथियों, गोखले जी ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज भारत की धन संपत्ति को लूट रहे हैं और भारतीय जनता को गरीब बना रहे हैं। उन्होंने किसानों के हितों के लिए आवाज उठाई, शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग की और भारतीयों को प्रशासन में अधिकार देने की बात कही। उनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि अंग्रेज अधिकारी भी उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे। साथियों, 1905 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसी साल उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य ऐसे युवाओं को तैयार करना था जो अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दें। ये संस्था गांव में जाकर शिक्षा देती थी, गरीबों की मदद करती थी और समाज में जागरूकता फैलाती थी। साथियों, गोखले जी का विश्वास था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक विकास भी आवश्यक है। दोस्तों, उनके जीवन का सबसे प्रेरणादायक पक्ष था उनका युवाओं पर विश्वास। वे कहते थे कि देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है। वे चाहते थे कि भारत का युवा केवल अपने करियर या सिर्फ अपने घर परिवार के बारे में न सोचे, बल्कि देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझे। आज जब भी कोई युवा केवल व्यक्तिगत सफलता के पीछे भागते हैं, तब गोखले जी के विचार हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो राष्ट्र के काम आए।

साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले का प्रभाव इतना गहरा था कि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब गोखले जी ने उन्हें भारतीय समाज और राजनीति को समझने की सलाह दी। गांधी जी ने कहा था कि गोखले जी का हृदय क्रिस्टल की तरह स्वच्छ था। साथियों, ये उनके महान चरित्र का ही तो प्रमाण है। दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों में अद्वितीय समझ और उस पर आधिकारिक पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। दोस्तों, उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वसरकार व्यक्ति की औसत चारित्रिक दृढ़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है। दोस्तों, इसके अलावा

0: आपको इसी सदस्यता की संबंधित एक घटना सुनाती हूँ। मुंबई म्यूनिसिपैलिटी में एक इंजीनियर थे, अमृतलाल वी ठक्कर। वे चाहते थे कि गोखले जी की सोसाइटी में सम्मिलित होकर राष्ट्र सेवा से उऋण हो सके। उन्होंने स्वयं गोखले जी से न मिलकर देव से प्रार्थना पत्र सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए लिखवाया। अमृतलाल जी चाहते थे कि गोखले जी सोसाइटी में सम्मिलित करने की स्वीकृति दें तो मुंबई म्यूनिसिपैलिटी से इस्तीफा दे दिया जाए। पर गोखले जी ने दो घोड़ों पर सवार होना स्वीकार न कर स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सोसाइटी की सदस्यता चाहिए तो पहले मुंबई म्यूनिसिपैलिटी से इस्तीफा दें। साथियों, गोखले जी की स्पष्ट और दृढ़ भावना के आगे इंजीनियर अमृतलाल वी ठक्कर को त्यागपत्र देने के उपरांत ही सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। यही इंजीनियर महोदय गोखले जी की दृढ़ नीति निर्धारण के कारण राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सेवा क्षेत्र में भारत विश्रुत ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, गोखले जी 1905 में आजादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड भी गए। उन्होंने अत्यंत प्रभावी ढंग से देश की स्वतंत्रता की वहां भी बात रखी। दोस्तों, गोखले जी हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है और इसी इसकी शक्ति इसकी एकता में ही है। उन्होंने हमेशा लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सोचने की प्रेरणा दी। आज के समय में जब समाज में विभाजन की बातें होती हैं, तब गोखले जी के विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भारत माता की सेवा की। लगातार परिश्रम और कमजोर स्वास्थ्य के कारण 19 फरवरी 1915 को उनका निधन हो गया। वे केवल 48 वर्ष के थे, लेकिन इतने कम जीवन में उन्होंने जो कार्य किए वे सदैव भारतवासियों के लिए प्रेरित रहेंगे।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत ये।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

तुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

साथियों, आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर है। लेकिन दोस्तों, ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इसके पीछे गोखले जी जैसे हजारों महान देशभक्तों का त्याग और संघर्ष छिपा है। उन्होंने अपने सुख, आराम और निजी जीवन को त्याग कर भारत के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। आज के युवाओं के लिए गोखले जी का जीवन एक संदेश है। अगर देश को महान बनाना है तो पहले स्वयं को महान बनाना होगा। अगर भारत को विकसित बनाना है तो शिक्षा, ईमानदारी और सेवा को अपनाना होगा। अगर सच्चा देशभक्त बनना है तो अपने कर्मों से राष्ट्र की सेवा करनी होगी। आइए साथियों, आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के आदर्शों पर चलेंगे, शिक्षा को महत्व देंगे, समाज की सेवा करेंगे और भारत को विश्व का सबसे महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे और अपनी इस भारत माता को हमेशा सलाम करते रहेंगे।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है भजनों से, फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने पहला गीत लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है।

0: श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम भजन संध्या में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म युग पुरुष से रविंद्र साठी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म किसना से, सुखविंदर सिंह, इस्माइल दरबार, आयशा दरबार और शैलजा की आवाज में। ये जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था एआर रहमान और इस्माइल दरबार ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लगान से, आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने।

0: श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म ड्रीम गर्ल से मीट ब्रदर्स की आवाज में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है मीट ब्रदर्स ने।
1: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म भाग जौनी से सुनील कमाठ की आवाज में। अमिताभ वर्मा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है मिथुन ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म खट्टा मीठा से के और सुनिधि चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म पद्मावत से शिवम पाठक की आवाज में। एम तुराज के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है संजय लीला भंसाली ने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण समाचार संध्या बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का

0: हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकीलों, न्याय बंधु, कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला

रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के

0: दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने

0: के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and

0: Spotlight.
1: Good evening, listeners.
2: शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। पांच अरकाने असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिनभर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज टू में मर्दों के इन्फरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमराह पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया।

0: में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इकतदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाकये के तहत आज एसआईआर के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड आईएएस अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के आईएएस अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मधु किया। अब पार्टी को मजमूरी तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इतिहास से अलीदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असम्बली इंतखाबात में टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह टीवी के पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकानी असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के दो दो अरकानी असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एमआईआरवी सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी दो रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे।

असम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले एनडीए सरकार की जानिब से शुरू की गई सामाजिक सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदाम से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और सामाजिक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड्स 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधही के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेड चुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेड चुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में एआईओएस मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहरीन और दीगर सिविलियन माहरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक, इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि वह मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खित्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आबनाए हुरमुस और उसके अतराफ ताजा वाकयात के पस मंजर में ये बयानात सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है।
केरल में मौसम गर्मा की बारिश

में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आईएमडी ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वीं मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी, मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साला तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सबो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजश्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असम्बली ने भी काबीना वजीरा के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा

ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करे जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे

0: मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही है आकाशवाणी की, वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खांटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था, कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस

0: भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
0: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां सात समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
0: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे दो तीन वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
0: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है, जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को, जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगवाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का

0: उपायोग मैं आज भी करती हूँ।
1: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के दो टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अलग अलग देशों के दोस्त थे, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
0: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
4: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन

0: है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीश लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला था कि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा

0: नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
2: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख। ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
3: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
2: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
3: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
2: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
4: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए। हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में, सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
3: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
3: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
5: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक

0: स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में, और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन, और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है, तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जो अनुप्रसारित होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग

0: कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Swendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Sathisan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka.